सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है शनिवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026, 5:58 38 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना बीएचईएल की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों का प्रबंधन। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
3: वर्षा के मौसम में कई दिनों तक लगातार वर्षा के कारण मधुमक्खी घर से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पराग और नेक्टर एकत्रित नहीं हो पाता है। इस अवधि में मधुमक्खियों के उपयुक्त फसल बहुत कम होते हैं। तेज बौछार और आंधी में कॉलोनी को बचाना भी मुश्किल होता है। वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों के शत्रु कीट और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के समुचित प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कॉलोनी अधिक कमजोर ना हो जाए।

0: के अभाव से ब्रूड पालन पोषण में कमी आ जाती है। कॉलोनी के जीवित रहने के लिए वर्षा शुरू होने से पहले ब्रूडर और सुपर छतों में पर्याप्त मात्रा में शहद छोड़ देना चाहिए। साधारणतः इस अवधि में नेक्टर की उपलब्धता नहीं के बराबर होती है, अतः शाम के समय मधुमक्खी कॉलोनी को जरूरत के अनुसार 50% चीनी की चाशनी यानी 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में खौलाकर उसका चाशनी बना लेना है। उसका 300 से 500 मिलीलीटर प्रति कॉलोनी 2 दिनों के अंतराल पर जरूर रखें। जब पराग नहीं मिलता है तो उस समय पहले से इकट्ठा किए हुए सुरक्षित पराग या पराग का पूरक देना चाहिए। कृत्रिम पराग बनाने के लिए सोयाबीन का आटा जो कि वसा रहित हो, पाउडर दूध और चीनी का पाउडर, उसमें 4 से 5 बूंद मधु मिलाकर खाली छत्ता के कोष्ठों में भर दें और छत्ता को फिर बक्सा में डाल दें। कृत्रिम पराग तब तक देते रहें जब तक प्राकृतिक तौर पर पराग उपलब्ध होना शुरू ना हो। आम तौर पर मुख्य रूप से अधिकतम बरसात की अवधि अगस्त माह के मध्य तक समाप्त होने को होती है तथा बीच बीच में खुली धूप भी दिखाई देती है। इस दौरान अनेक प्रकार के जंगली वनस्पतियों और घास में फूल खिलने लगते हैं, जिससे मधुमक्खियां फिर से पराग इकट्ठा करना आरंभ कर देती है। इस समय जब भी आसमान साफ हो बक्सों का निरीक्षण अवश्य करें। यदि कोई छत्ता खाली पड़े हुए हैं या काले रंग के हो गए हैं तो उन छत्तों को हटा दें। बक्सों के साफ सफाई पर ध्यान अवश्य दें। बक्से के सभी पुराने छत्तों को बदलने का कार्य सितंबर माह तक कर लें। निकाले गए छत्तों को साफ करने के बाद उन्हें भविष्य में प्रयोग में लाने के लिए सुरक्षित रखें ताकि मोमी पतंगा द्वारा क्षतिग्रस्त ना हो। सितंबर माह में जब श्रमिक मक्खियां जंगली पेड़ पौधों से पराग लाने लगेगी तब मधुमक्खी पालक आधार पर परत लगे हुए फ्रेम को बक्सा में फिर से डाल दें। ताजा पराग मिलते ही मधुमक्खियों को सक्रिय करने के लिए चीनी की चाशनी फिर से अधिक मात्रा में दें, जिससे मधुमक्खियां नए छत्ते का निर्माण आरंभ कर दें। कमजोर मधुमक्खी कॉलोनी को आपस में मिला दें और कमजोर रानी को भी हटा दें। वर्षा ऋतु में नमी की अधिकता से निपटने के लिए हवा का आवागमन भी बक्से में होना चाहिए।
1: वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों का प्रबंधन, इस विषय पर चर्चा कर रही थी अनीता तिर्की। अब आज का खेती किसानी कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी रांची है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूं। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत हो

0: है। अगर हमें अपने अंतस से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता तब हम अंतस से दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: ये था आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है इस देशभक्ति रचना के साथ, स्वर है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर की गाई इस देशभक्ति रचना के बाद अब आपको सुनवा रही हैं भक्ति रचनाएं। पहले प्रस्तुत है असित देसाई की गाई ये भक्ति रचना।

नरसिंह मेहता की ये रचना थी, स्वर था असित देसाई का। अगली रचना है पुरुषोत्तम जलोटा के स्वर में और रचना है सूरदास की।

सुरेश वाडकर की गाई इस रचना के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। शाम 3:55 से आप सुनेंगे पीएम किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आज है शनिवार, शाम 7:20 से आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी हो और संताली भाषा में है।

रात 8:10 से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। नौ पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती आप सुनेंगे 9:30 से और इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इंदौर के ए श्रेणी के कलाकार विवेक करमहे से ठुमरी और दादरा।

और अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे डॉक्टर शिवानंद प्रसाद से। बातचीत का विषय होगा बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग का दुष्प्रभाव और सावधानियां। सात बजकर 7:45 पर सुबह कानून की बात में साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल विषय पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे निर्मल कुमार भारती से। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरूपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी रांची है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर शिवानंद प्रसाद से। भेंट वार्ता का विषय है बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग का दुष्प्रभाव और सावधानियां। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
3: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम प्रायः देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोया रहता है, नींद में रहता है, तो वो खर्राटे भरता है और इससे सामने वाले को भी परेशानी होती है। लेकिन खर्राटा व्यक्ति क्यों लेता है, क्या कारण है,

0: हैं और खर्राटे भरते रहते हैं। क्या कारण है इसके पीछे और क्या यह सामान्य है या इसे असामान्य मानेंगे?
1: सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है कि खर्राटा क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि आप देखें कभी भी अगर नींद को दर्शाया जाता है, चाहे वो आप पत्र में देखें या फिल्मों में देखें या टेलीविज़न में देखें, सब जगह खर्राटे उसका हॉलमार्क होता है, बट खर्राटे नॉर्मल नहीं है, खर्राटे एबनॉर्मल हैं और ये बीमारी का संकेत हैं। खर्राटे अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है तो या तो उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक साइनसाइटिस और ये उस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या गले जिसको हम लोग कहते हैं गलकोस, उसका उसकी उसमें मोटापा आ गया है और सांस की नली सोने के दौरान चिपक रही है। जब भी आप देखे होंगे कि किसी भी पतली जगह से हवा जाती है तो शोर होता है, तो उसी तरह जब सांस की नली का कैलिबर यानी कि उसका डायमीटर छोटा होने लगता है नींद के दौरान, तो वहाँ से जब हवा जाती है तो खर्राटे आते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों का संकेत है।
0: तो खर्राटे जब व्यक्ति भरता है तो जाहिर सी बात है जैसा आपने बताया सामान्य नहीं है और बहुत सारी गंभीर बीमारियों का भी संकेत देता है, तो इसका व्यक्ति के संरचना से भी कोई संबंध है या कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, किसी को डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई मोटापा से ग्रसित है, तो क्या ऐसे व्यक्ति भी खर्राटे भरते हैं?
1: पहले तो हमें ये देखना होगा कि पेशेंट जो है, ये जो मरीज है जो खर्राटा ले रहा है, उसका BMI क्या है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है, 30 से अगर ऊपर हो रहा है, तो उसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। तो ऐसे मरीज का पूरे शरीर का वेट तो बढ़ता ही है, साथ साथ गले गला जो जहाँ हमारी सांस की नली चालू होती है और जहाँ नाक खत्म होता है, वहाँ के बीच के एरिया जो भी दूरी होती है उसको हम लोग फैरिंग्स यानी गलकोस कहते हैं, तो उनका नेक गर्थ भी बढ़ जाता है, तो नेक गर्थ बढ़ने के साथ साथ अंदर का भी जो स्पेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। एक तो ये कारण, दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति को साइनसाइटिस है, नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है और उस वजह से भी वो खर्राटा ले सकते हैं, तो पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंट्स का कि वो उसका BMI क्या है, फिर कुछ क्वेश्चनेयर होते हैं, उन सब के तहत हम देखते हैं कि ये हाई रिस्क में आते हैं या लो रिस्क में आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका आंकलन करते हैं। अब आपको पहले समझना होगा कि नींद क्या है। नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमें अगले दिन के लिए रिचार्ज करती है। नींद के 4 स्टेज होते हैं, N1, N2, N3 और REM। N1, N2 लाइट स्लीप होता है, N3 REM जो होता है वो डीप स्लीप होता है। कम से कम 25% डीप स्लीप होना चाहिए। ये साइकिल पूरी रात चलता है, N1, N2, N3, REM। तो ऐसे मरीज जैसे ही N1 से N2 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा बॉडी का टोन, यानी कि आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर नींद में सोया है उसका हाथ उठाएंगे तो खटाक से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बॉडी टोन नहीं होता। उसी तरह सांस की जो हमारी फैरिंग्स होते हैं उसके मसल्स भी जो है ना, वॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे कमांड के हिसाब से काम करते हैं, बट नींद के दौरान उनका भी टोन जाता है। तो आमतौर पे इतना स्पेस होता है कि टोन जाए और वो अगर ग्रेविटी से फॉल कर रहा है, टंग फॉल कर रहा है या वो गिर रहा है थोड़ा, तो इतना स्पेस होता है कि आमतौर पे आदमी आराम से सांस लेता रहता है और पूरी नींद पूरा करता है। बट अगर गले का साइज बढ़ गया और मोटापा आ गया और अंदर का साइज भी कॉम्प्रोमाइज है, तो जैसे जैसे वो नींद की तरफ जाएगा, डीप स्लीप में जाएगा, टोन खत्म होने लगता है और वो सांस की नली चिपकने लगती है, खर्राटा होते रहता है और वो एक समय आके चिपक जाता है। तो अभी भगवान ने ऐसा बना है ऊपर वाले ने कि बिना ऑक्सीजन सांस के हम नहीं रह सकते, तो पेशेंट फिर वो करबट ले लेगा या उठ जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा, या उस स्लीप उसके वेक साइकिल में चली जाएगी और फिर वो खर्राटा फिर चालू होगा। तो ये प्रक्रिया पूरी रात चलती रहती है और ये इस प्रक्रिया की वजह से पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज, हृदय रोग में का होना, हार्ट रेट इरेगुलर होना, ब्रेन स्ट्रोक और अंत में कार्डियक अरेस्ट, ये बहुत ही लंबे समय पे होता है। ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में होता है, लेकिन उससे पहले ये सब आने लगते हैं। और पहला पहचान ये है कि आपको खर्राटा आ रहा है, रात में आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, सुबह आप उठ रहे हैं तो सर दर्द हो रहा है या आपको लग रहा है और सोना है, दिन में आप सो रहे हैं, अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो भी आपको नींदें आ रही हैं, आप रिफ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इरिटेशन छोटी छोटी बातों पर होना,

0: ये सब इसके शुरुआती लक्षण है जो हमें देखना है और हमें पहचानना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है, तभी हम इसका आंकलन कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी है और ये सामान्य नहीं है खर्राटा लेना। तो इस तरह की जो खर्राटे लोग भरते हैं तेज तेज स्वरों में, तो इसका उपचार क्या है, कैसे इस बीमारी से हम निजात पाए, और हमारी जीवन शैली से भी इसका कोई संबंध है जो बिगड़ती जीवन शैली है हमारी?
0: बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो पहले पेशेंट को खुद आंकलन करना है कि क्या मेरी नींद कंप्लीट हो रही है, हम खर्राटा ले रहे हैं कि नहीं। और खर्राटा पेशेंट को नहीं पता चलेगा, उनके जो पार्टनर हैं, जो उनके साथ सोता है, वो बताएंगे कि आप कितना तेज खर्राटा ले रहे हैं। तो खर्राटा से उनका नींद प्रभावित है कि नहीं, तो खर्राटा ले रहे हैं, नींद रात रात में खुल रही है, सुबह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दिन में भी नींदें आ रही है आपको, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। फिर हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम पहले BMI देखते हैं, नेक गर्थ देखते हैं, जैसे 16 इंच से ज़्यादा अगर औरतों में या मर्दों में 17 इंच के लगभग, तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। और हमारे स्कोरिंग सिस्टम होते हैं जो हम करते हैं, उसके हिसाब से भी हाई रिस्क लो रिस्क हम लोग पकड़ लेते हैं। और उसके बाद पेशेंट का मुंह खोल के भी हम स्कोरिंग करते हैं, मलहम पट्टी स्कोरिंग कहते हैं उसको, तो वो भी हम करते हैं। और उसके हिसाब से हम लगाते हैं कि किसकी आगे जांच होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। तो मेन जांच जो है इसको पकड़ने का, वो है स्लीप स्टडी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलीसोमनोग्राफी PSG कहते हैं, विथ टाइट्रेशन। और वो ना नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जैसे ECG होती है उस टाइप की, और आपके घर पे आपके आराम से आपके बिस्तर पे हो सकती है। तो उस पॉलीसोमनोग्राफी में हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट का ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम AHI इंडेक्स कहते हैं, एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स, वो एक घंटे में कितनी बार हो रहा है। 10 सेकंड तक अगर वो सांस रुक रही है तो एक काउंट होता है, 10 सेकंड से कम में वो एक काउंट नहीं होता है। तो अगर वो एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कौन हाई रिस्क में है, कौन लो रिस्क में है, उसके हिसाब से हम उसका आंकलन कर लेते हैं। तो मुख्यतः पॉलीसोमनोग्राफी हम करते हैं लोगों का, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। जीवन शैली इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, हम खाना खाते हैं तुरंत सोने चले जाते हैं, दिन में कोई वर्कआउट नहीं करते हैं। हमें ये करना है कि हम अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स 21 से 24 के बीच में रखें। उसके लिए आप जितना खाना खाते हैं उसके हिसाब से आपको उतना वर्कआउट करना है। अपना जो ट्रंकल ओबिसिटी, पेट नहीं निकलना चाहिए, और नेक गर्थ अगर बढ़ रहा है तो आप उस तरह का स्पेसिफिक एक्सरसाइज कीजिए। और आप एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप सोने जाते हैं उससे 2 घंटा पहले ही खाना पीना खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हैं। और वेट कंट्रोल और डाइट कंट्रोल इसके मुख्य भाग हैं।
1: मोटापा से दूरियां बनाएं और खान पान पर यदि हम नियंत्रण रखते हैं तो इस खर्राटे की बीमारी से हम बच सकते हैं। और ये बीमारी बिल्कुल इलाज है इसका, आप ठीक हो सकते हैं। बस ज़रूरत है जित खर्राटे आप भर रहे हैं, जो आपके बगल के लोग हैं, आपके पार्टनर हैं, वो चिकित्सक से सलाह लें, श्वसन रोग विशेषज्ञ से मिल लें और एक खर्राटे की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निरुपम शरद, श्वसन रोग विशेषज्ञ, आज आप इस हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, कल एक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: खर्राटे की बीमारी और उपचार, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर निरुपम शरण और इनसे बातचीत कर रहे थे संजय कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम सुबह सुरीली।

सुन रहे थे फिल्म अनाड़ीसी गीत, और अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अगला गीत फिल्म छलिया से

अब आज का सुबह सुरीली प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। कानून की बात, इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं भेंटवार्ता, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। भेंटवार्ताकार हैं श्री निर्मल कुमार भारती, भेंटकर्ता संजय कुमार लाल, प्रस्तुति संजय कुमार लाल की।

0: मित्रों जोहार नमस्कार। मित्रों आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है। बहुत लोग उस सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। बहुत लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर और बहुत लोग उसको सिर्फ देखते रहते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई भी मैसेज उस पर डालते हैं, कोई भी बातें लिखते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है और फिर गलत संदेश समाज में जाने लगता है। इसके साथ साथ कोई भी फ़ोटो जब आप उसमें पोस्ट करते हैं तो उस फोटो को बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसमें अश्लील सामग्रियों का समावेश कर उनकी छवि को धूमिल करने की प्रयास की जाती है, जिससे उसके साँख पर आँच आती है और फिर समाज में एक गलत संदेश चला जाता है। तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं कि साइबर बुलिंग क्या है और कानूनी पहलू क्या है और जो व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है वो क्या करे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज कानून की बात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार भारती जी।
1: नमस्कार
0: निर्मल जी, स्वागत है। निर्मल जी, साइबर अपराध आजकल बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया से किसी न किसी तरह से अपने आप को जुड़ाव करता है, अपने आप को जोड़ता है और ऐसे में जो उसमें फ़ोटो पोस्ट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और फिर उस पर बहुत सारी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है, जिसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। तो साइबर बुलिंग क्या है, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे और इससे कैसे बचें और कानूनी पहलू क्या है, किस प्रकार अपना हम बचाव करें। निर्मल जी, साइबर बुलिंग क्या है?
1: देखिए, साइबर बुलिंग का अर्थ है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना, उसे धमकाना, अपमानित करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग आजकल बृहद पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उस पर अपने फोटो वीडियोज़ को डालते हैं, तो इसका

0: संप्रेक्षण बहुत दूर तक होता है। बहुत ऐसे लोग हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें कि हम व्यक्तिगत रूप से पहचानते नहीं हैं, या कई बार पहचानते भी हैं। तो जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को धमकाने के लिए, उससे एक्सट्रॉर्शन लेने के लिए या उसको परेशान करने के लिए किया जाता है, तो यही साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग के कई प्रकार हैं, जैसे अपमानजनक धमकी भरे संदेश भेजना, किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, अशोभनीय टिप्पणियां पोस्ट करना, फर्जी प्रोफाइल बनाकर किसी पक्की के पहचान का दुरुपयोग करना, कि निजी फोटो व्यक्तिगत जानकारियों को बिना किसी की अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा कर देना, और इसका एक सबसे गंदा तरीका है साइबर स्टॉकिंग, यानी कि बार बार किसी का ऑनलाइन रूप से पीछा करना गलत उद्देश्य से। तो ये कुल मिलाकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, जिसे कि हम साइबर बुलिंग कहते हैं।
1: जी, कोई व्यक्ति इस साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, उसकी छवि धूमिल हो जाती है और समाज में गलत संदेश जाने लगता है, तो व्यक्ति क्या करें इस साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग से अपने आप को बचाव कैसे करें?
0: देखिए, साइबर बुलिंग से बचाव के कई सारे उपाय हैं, और इसका सबसे प्रमुख उपाय है कि अपनी निजी जानकारियों को यथासंभव प्रयास किया जाए कि उसे ऑनलाइन प्रदर्शित ना किया जाए। और कोई भी सामग्री जब हम इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो सबसे पहले उसके दुष्परिणामों के बारे में हम सोच लें। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज़ करिए कि हम 15 दिन के लिए अपने घर में ताला लगा कर कहीं बाहर जा रहे हैं, ये हमारी निजी जानकारी है। अगर हम इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं तो कई बार चोर उचक के उसका फायदा उठा सकते हैं। ऑल्दो ये साइबर बुलिंग नहीं है, लेकिन ये उसका दुष्परिणाम तो है। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का मजबूत पासवर्ड बनाना, उसके सेटिंग्स में कुछ ऐसा डालना कि अननोन लोग उसका उपयोग ना कर सकें, उसको देख नहीं सकें, अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को सार्वजनिक नहीं करना, किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता को जांच करना। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राजनीतिक दल और राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कई तरह की सूचनाओं को बिना ये परखे इंटरनेट की सामग्री में डाल देते हैं कि ऐसी घटना हो गई है। लोग कई बार बड़े पैमाने पर उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, तो यह गलत है या एक तरह का अपराध भी है। इसके अलावा साइबर उत्पीड़न के सभी प्रमाणों को सुरक्षित रखें। जैसे कि सपोज करें कि अगर किसी महिला के साथ कोई गलत घटना हो गई है, तो उसकी पहचान को इंटरनेट पर डालना यह एक साइबर अपराध है, इसको बचा कर रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपने घर के बच्चों को इंटरनेट का मिनिमम इस्तेमाल करने दें, और जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें बीइंग गार्जियन आप ये बताएं कि इसका इस्तेमाल किस सीमा तक किया जाए और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।
1: जी निर्मल जी, जब इस तरह की घटना घटित हो जाती है, आपकी फ़ोटो का भेजा इस्तेमाल किया जाता है और AI के माध्यम से अश्लील सामग्री आपके फ़ोटो में जोड़कर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है वो कानून का किस प्रकार सहारा ले, अपना बचाव किस प्रकार करे?
0: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कानून हमारे साथ कहाँ तक है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि भारत में बहुत पहले से ही भारत की सरकार ने यह सोचा और इस बात पर विचार किया कि साइबर बुलिंग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो सन 2000 ईस्वी में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमारे यहाँ लाया जा चुका है, और उसमें साइबर अपराधों के लिए एक बड़े पैमाने पर डील किया गया है कि साइबर अपराध क्या है, किस तरह की सामग्रियों को साइबर क्राइम में आपराधिक सामग्री मानी जाएगी, वगैरह वगैरह। धारा 66C जो है वो आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट से संबंधित है, यानी कि किसी के पहचान का गलत ढंग से इंटरनेट पर इस्तेमाल करना यह अपराध है धारा 66C में। 66D जो है वो कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण या धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। धारा 67 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिकली प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 67A और 67B जो है ये यौन रूप से स्पष्ट सामग्री और बाल अश्लीलता से संबंधित है, यानी कि बच्चों से संबंधित अगर कोई अश्लील सामग्री को इंटरनेट पर डाला जाता है तो ये बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये तो हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात। इसके अलावा भारत

0: न्याय संहिता और अभी वर्तमान में जो BNS है, इसमें भी साइबर अपराध को लेकर कई तरह के प्रावधान डाले गए हैं। जैसे अगर किसी के निजी सामग्रियों को इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता है तो यह एक डिफामेशन यानी कि मानहानिकारक है। इसके लिए लोग क्रिमिनल डिफामेशन के केस कर सकते हैं। अगर आपराधिक धमकी, पीछा करना, झूठी एवं हानिकारक सामग्रियों के प्रसार को अगर किया जाता है तो ये साइबर क्राइम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ BNS में भी अपराध है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जैसा कि जानते हैं कि बच्चों के लिए जो यौन अपराध हैं उसको लेकर जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में भी ऑनलाइन यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले को लेकर विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
1: जी, तो जो पीड़ित है या पीड़िता है वो क्या करे, कहाँ अपनी बात रखे और कैसे इन सब चीज़ों से वो बाहर निकले?
0: बिल्कुल सही बात है। हम अब कानून के बारे में न सिर्फ जानें बल्कि कानून का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले कि अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से उत्पीड़न करने का प्रयास करता है तो उसके किसी भी उत्पीड़न का जवाब न दें। दूसरे, अपने संदेशों, पोस्ट और चैट के स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखें। अगर मान, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई संदेश भेजा जाता है तो वो इन टू इन इनक्रिप्टेड होता है और भेजने वाले चाहें तो एक विद इन समय में उसे डिलीट भी कर सकते हैं अपने तरफ से। तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि उन सामग्रियों को सुरक्षित रखें ताकि अगर कभी कानूनी मामला बनता है तो उसका इस्तेमाल न्यायालय के पास, पुलिस के पास किया जा सके। सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें। अगर मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सामग्री देख लेते हैं जो ऑप्शन है, नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर उसका शिकायत करने का प्रावधान होता है। फेसबुक वगैरह में आप देखेंगे अगर किसी वीडियो से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर उसमें गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, कोई यौन सामग्री अगर फैलाई जा रही है, तो उसकी शिकायत उसी समय उसी वीडियो के लिंक में कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की या उस तरह के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की जिम्मेदारी होती है कि उसे हटा देता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर बुलिंग हो रहा है तो निकटतम थाने या साइबर थाने में जाकर अपने बात को रख सकता है और उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है, FIR दर्ज कर सकता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है। यहाँ पर जाकर अगर आप अपने बातों को रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सरकार उस पर डायरेक्ट एक्शन लेती है। उसी तरह अगर कोई साइबर बुलिंग कर रहा है तो उसे छिपाए नहीं बल्कि कानून के सामने उसे लेकर आए, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं सो दैट कि उस पर जल्दी से जल्दी और उचित कार्रवाई की जा सके।
1: जी निर्मल जी, कैसे हम इन सब चीज़ों से अपना बचाव करें, गलत सामग्री पोस्ट नहीं करें, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या उस पर हम साझा नहीं करें और जो भी साझा करें वो तथ्यपूर्ण जानकारी वहाँ पहुँचाएँ ताकि किसी तरह की भ्रामक जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचे?
0: सबसे पहली बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी सामग्री को इंटरनेट पर पोस्ट करने से पहले जांच कर लें और दूसरे के द्वारा डाली गई सामग्री पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें।
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है, तीसरी बात, कि अगर कोई सामग्री ऐसी है जो जिसे कि आपकी अंतरात्मा अलाउ नहीं करती है कि ये नहीं होनी चाहिए तो तुरंत उसकी शिकायत करें। उचित फोरम में, फोरम बने हुए हैं, उसकी शिकायत करें।
1: जी निर्मल जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें बहुत सारे धोखाधड़ी भी की जाती है, साइबर क्राइम किया जाता है और आपके बैंक से पैसे की निकासी भी हो जाती है, आपसे बहुत सारे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है फ़ोन के माध्यम से, तो इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे निर्मल जी कि इस तरह की बातें होती हैं, कोई आपको फ़ोन करता है और कुछ आपसे बैंक की जानकारियाँ मांगना चाहता है या और भी कोई गोपनीय जानकारी आपसे साझा करना चाहता है या फिर आपको धमकाता है, साइबर अरेस्ट किया जाता है, इससे हम कैसे बचें?
0: देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि किसी भी तरह की ऐसी सामग्री को पोस्ट ना करें। आपके प्रश्न का जवाब मैं दो खंड से दूंगा, दो तरह से दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने बैंकिंग अकाउंट्स के बारे में सोशल मीडिया पर कभी साझा ना करें। विजिटिंग बैंक ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। दूसरी बात है कि अपने अकाउंट, अपने पासवर्ड, अपने OTPs की जानकारी न तो किसी को फ़ोन पर दें और न ही इसे सोशल मीडिया में कभी पोस्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, वीडियो चैट के माध्यम से आपको यह कहने का कोशिश करता है कि हमें कुछ उपलब्ध कराएं, तो वो उपलब्ध ना कराएं, और अगर डराने का प्रयास करता है यह कहते हुए कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, डिजिटल अरेस्ट एक अपने आप में एक बहुत बृहत विषय है, आप ये जानें कि पुलिस कभी भी डिजिटली अरेस्ट ना करती है, बल्कि अरेस्ट जब भी किया जाता है तो किसी व्यक्ति को वारंट दिखाकर अरेस्ट किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट एक सर्वथा गलत बात है, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई अरेस्ट होता नहीं है, इसीलिए इससे दूर रहने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है, सो दैट कि डिजिटल अरेस्ट हम नहीं हो, और अगर कोई ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करके आपसे पैसे की डिमांड करे तो यह मानकर चलें कि वह साइबर ठग है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करना है।
1: इस तरह की कॉल्स को आप अटेंड ही नहीं करें, किसी तरह की आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो आप अपना बचाव करें, और कोई भी जानकारी इस और कोई भी फ़ोन कॉल्स, गलत फ़ोन कॉल्स आते हैं, कोई ये कहता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं या आपको धमकाने की कोशिश करता है, तो इससे आप सजग रहिए और जागरूक रहिए, और इस तरह की कोई भी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दीजिए, और इस तरह की फ़ोन कॉल्स आते हैं तो फिर साइबर सेल है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहूँगा कि पोस्ट करने से पहले सोचें, शेयर करने से पहले सत्यापित करें, और ऑनलाइन भी दूसरों का सम्मान करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचें और कानूनी रूप से कैसे हम अपना बचाव करें, इस पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। भेंटवार्ताकार थे श्री निर्मल कुमार भारती, अंडर सेक्रेटरी झालसा। भेंटकर्ता संजय कुमार लाल, प्रस्तुति संजय कुमार लाल की। कानून की बात प्रोग्राम यहीं तक। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, और उसके बाद प्रादेशिक समाचार 8:30 से। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के

0: वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में कर रहे।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा

0: एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 18,800 crore rupees 880 crore rupees to the bank accounts of 9

0: and across the country, reports in the Sun Times. Delhi High Court upholds government order blocking Telegram to secure NEET retest. Government empowered to issue emergency blocking directions under IT Act, writes the Indian Express. In its editorial titled Trump's Versailles and a Chance for Peace, the Tribune writes that there is delicious irony in the fact that President Trump signed the Memorandum of Understanding with Iran at Versailles on June 17. The terms of Trump's surrender at Versailles are a far cry from the conditions that he had unilaterally set for the Iranians. Like the original Treaty of Versailles in June 1919, this one will have a profound psychological impact, not just on the US, but also on Israel, on the Gulf states, and indeed on Iran itself. And finally, an app, Abhigyan, has been launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी, कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, तीसरे दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर जन कल्याण शिविर भी लगेंगे, जहां समस्याओं का समाधान और योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
4: 20 तारीख को ठीक 2 बजे 20 जून का दिन पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में डालेंगे। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में जनता की जायज समस्याओं का समाधान होगा।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रांची और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के जैप वन परिसर में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी संख्या में नए लाभार्थी, युवा और विभिन्न क्षेत्रों की नियुक्ता शामिल हुए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तनवीर अहमद ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे देश में औपचारिक रोजगार और युवाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया है।
5: रांची में करीब 400 लोग नियोक्ता जो एम्प्लॉई हैं, सबकी भागीदारी बहुत अच्छी है। सोच है विकसित भारत की, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों को सारे नियोक्ता और जो लोग आए हैं यहाँ पर उन सबका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये स्कीम अच्छी चलती रहेगी और प्रधानमंत्री का सपना जो विकसित भारत का है कामयाब होगा।
3: इधर सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। योजना के तहत 2 वर्षों में 3,50,00,000 रोजगार का लक्ष्य है। पहली नौकरी पर युवाओं को 15,000 रूपये और कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सांसद जोबा मांझी ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने कहा कि तय सीमा के भीतर सदर अस्पतालों की कमियां दूर न होने पर संबंधित सिविल सर्जन को पद से हटा दिया जाएगा।
6: 15 दिन का मैंने मोहलत दिया है कि हर बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। खामियां आ रहा है तो खामियों को ठीक कीजिए और अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो मैंने 15 दिन तक का समय दिया, सब सिविल सर्जन को हटा दें। जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं और रेफर हॉस्पिटल हैं वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है अपना, सब 108 के भरोसे है। तो जब मैं डिटेल मांगा तो बता रहा सर सारा एम्बुलेंस खराब है।
3: उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में एम्बुलेंस की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार 224 नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। रांची में ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। कल महात्मा गांधी रोड पर मॉडिफाइड बाइक, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और बिना हेलमेट वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में 10 से ज्यादा मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं, जिनके साइलेंसर मौके पर ही खोलकर ऑनलाइन चालान काटे गए। इसके अलावा पॉल्यूशन फेल वाहनों और बिना हेलमेट चलने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड की करीब 8-10% आबादी सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने जा रही है। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने बताया कि राज्य में इस आनुवांशिक बीमारी का प्रसार काफी अधिक है।
7: प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग इसको और इंटेंसिफाई कर सकें। क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें राज्य के नागरिकों को। सही सब भी आई हुई थी, ट्रेनिंग कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल है, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी की क्या गंभीरता है, राज्य सरकार का क्या योगदान है।
3: और शेष समाचार इस विराम के बाद।
8: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा में स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में व्यापक स्तर पर योगाभ्यास चल रहा है। कई गांवों से हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्थानीय योग प्रेमियों और प्रशिक्षकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वैश्विक पहल से लोगों में सेहत के प्रति क्रेज बढ़ा है और योग से बीपी तथा शुगर जैसी बीमारियां नियंत्रित हो रही हैं।
10: जब से योग दिवस स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, तब से हम लोग योग से काफ़ी जुड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके योग करते हैं और 21 जून को गांधी मैदान में लगभग 400 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और योग करेंगे।
3: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल आज और कल खुले रहेंगे। शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्कूल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संचालित होंगे। यहां योग गतिविधियां होंगी। शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है और कार्यक्रमों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून के राज्य में कई अन्य हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन राज्य के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आरव यादव ने ट्रैक पर तेज रफ्तार दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं हजारीबाग के नूर आलम ने शानदार खेल दिखाते हुए रजत पदक जीता। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही प्रतियोगिता में मेजबान झारखंड के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है। इन पदकों में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मांडर में 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री ही म्यूटेशन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, डीवीसी क्षेत्र के 6 जिलों में बिजली को लेकर ज्वाइंट वेंचर। प्रभात खबर लिखता है, 1 जुलाई से रांची से 4 विमान सेवाएं होंगी बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है, रांची संघ कार्यालय के बाद कानपुर और लखनऊ में धमाके की थी तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सदर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, व्यापक स्तर पर योगाभ्यास जारी। कल भी खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। और रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। तीसरे दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी का, ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 540.45 मीटर पर।

आप सुन रहे थे पचपन गणिया लोकगीत कार्तिक कोहरी और साथियों से। अब आज का लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रसरंजन। पहले संदेश।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: प्रोग्राम की पहली पेशकश फिल्म हम साथ साथ हैं।

रब। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म करण अर्जुन। आवाजें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। शब्द हिंदी वर्ग और संगीत राजेश रोशन का।

0: और इसी के साथ ही अब आज का रसरंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीटर वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं सरद पर राग विलास खानी तोड़ी, आला पर जोड़ के बाद दो कतें, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित कुमार केटिया। तबले पर साथ दिया है सृजित चटर्जी ने। पहली संदेश
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। आलाप और चोट के बाद दो गतें आपने सुना। मध्यलय की गत जप ताल में और ध्रुव लय की गत तीन ताल में निभाते थी। कलाकार थे पंडित मनोज कुमार केडिया। तबले पर साथ दिया था सृजित चटर्जी ने। अब यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीटर वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला प्रोग्राम कल्याणी आप सुनेंगे 10 बजे।

0: श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी है स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफर पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि बीती को बिसारना ही अच्छा। मित्रों, जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख, सफलता और असफलता, मिलन और बिछड़न जैसे अनेक अनुभव हमारे साथ चलते हैं। कुछ यादें हमें खुशी देती है तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मन को बार बार पीड़ा पहुंचाती है। ऐसे में कहा जाता है कि बीती को भूलना ही अच्छा। अतीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमें सीख मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन आज हम पुरानी गलतियों, असफलताओं या दुखद घटनाओं को बार बार याद करते वर्तमान को दुखी बना लेते हैं, तब अतीत हमारे लिए बोझ सा बन जाता है। दोस्तों, कई लोग अपने जीवन में हुई किसी गलती, अपमान या नुकसान को वर्षों तक याद रखते हैं। वो बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उसका मन अशांत रहता है और वर्तमान की खुशियां का आनंद नहीं ले पाते। वास्तव में जो समय बीत गया उसे बदलना नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य को अवश्य संवारा जा सकता है। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। हर दिन सूरज डूबता है और फिर नई सुबह लेकर लौटता है। पेड़ पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्तों का स्वागत करते हैं। यदि प्रकृति पुरानी बातों को पकड़े रहती तो शायद विकास और परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बीती बातों को छोड़ना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने अनुभवों को भूल जाए। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन उनके दुख को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्षमा, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें अतीत की पीड़ाओं से मुक्त करने में सहायता करते हैं। जब हम बीती बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देते हैं, तब जीवन अधिक सरल, सुखद और सार्थक बन जाता है। मन में नई ऊर्जाएं आती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर पूरे उत्साह के साथ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। बीती हुई बातें को याद करके दुखी होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथों में है। इसलिए मुस्कुराइए, वर्तमान को अपनाइए और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इस दौरान माँ और गर्भावस्था शिशु दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योग गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। विशेषज्ञ की सलाह और प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में किए गए हल्के योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान तनाव को कम करके शरीर में लचीलापन बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद करते हैं। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने की क्रियाएं शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाती है तथा प्रसव के समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय पर, गर्भावस्था के दौरान योग क्रियाएं पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो पर आमंत्रित है खास मेहमान रेणु कुमारी पांडे जी, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, हमारे जीवन में योग का बड़ा ही महत्व है। खासकर यदि महिलाएं या हमारी बहनें गर्भवती हैं तो गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से योग क्रियाएं वो करें ताकि गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ रहे और माँ का भी सेहत काफ़ी अच्छा रहे। इस पूरे दरमियान 9 महीने के दरमियान माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और हमारी माताएं और बहनें तनाव से मुक्त हों तो कौन कौन से योग क्रियाएं करें ताकि दोनों व्यक्ति स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित है रेणु कुमारी पांडे जी। रेणु मैडम, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: गर्भावस्था के दौरान हमारी माताएं और बहनें कौन कौन सी योग क्रियाएं करें, और खासकर इस समय हमारी माताओं बहनों को बहुत सारी तनाव हो जाता है, मन में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा है और किस तरह से वो पृथ्वी पर आएगा, तो कौन कौन सी योग क्रियाएं करें और गर्भावस्था में योग का कितना महत्व है?
2: जी, हर माता चाहती है या परिवार भी चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा हो, संतान आए, वो स्वस्थ रहे। और आजकल के समय में अधिकतर हो रहा है कि बच्चे पेट से ही बीमार हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए योग और प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान, ये सब बहुत ज़रूरी है। आजकल महिलाओं को जो नई माता बन रही है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में बैठे बैठे ही अगर वो इस अभ्यास को कर लेंगी, जैसा कुछ ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर वो ओंकार का जाप करें मन की शांति के लिए, जैसे बेचैनी, तनाव, हार्मोनल चेंज जो होता है उसके वजह से होता है, और

अभ्यास और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये तीन आपके अभ्यास जो हैं आपके बच्चे को स्वस्थ और किसी भी तरह की बीमारी से बचाएगा, और साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप कुछ एक्सरसाइज जैसे कि ताड़ासन है, फिर वज्रासन है, जो खाने के बाद गैस की शिकायत अगर होती है माता को बहुत ज़्यादा, वज्रासन में बैठेंगे बिल्कुल उसका कोई हानि नहीं है। वज्रासन में अपने दोनों ही पैरों को घुटने को मिलाते हुए उसी पंजे पे बैठेंगे घुटने पे, और थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके रखेंगे। खाने के बाद विशेष कर इसको करना है जिससे कि खाना अच्छे से पच सके, किसी भी तरह की गैस की समस्या ना हो। और जो नित्य अभ्यासी हैं, जो महिलाएं पहले से ही योग और प्राणायाम का प्रैक्टिस करती हैं, अगर वो चाहें तो सूर्य नमस्कार का भी धीरे धीरे अभ्यास कर सकती हैं। बहुत तेज गति से कोई भी अभ्यास को नहीं करना है। अगर वो तेज गति से करती हैं तो उनके शिशु पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए तेज गति से कोई भी। और सबसे बड़ी सावधानी ये रखना है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि मैं चाहे प्राणायाम कर रही हूँ या फिर एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उन दोनों में अगर आपको किसी भी तरह की बेचैनी लगे या असहज महसूस करें तो आप उस अभ्यास को उसी समय रोक दें, अन्यथा उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव आपके शिशु पर और आप पर भी पड़ सकता है। और एंजाइटी जो बनी रहती है गर्भावस्था के दौरान, शरीर में मन में तनाव भी रहता है, मस्तिष्क में भी, तो उसके लिए मेडिटेशन का कुछ थोड़ी देर का अभ्यास, और सबसे सरल है ध्यान का अभ्यास करने के लिए या मेडिटेशन, कि आप सुबह जब उठती हैं तो सुबह उठ करके कुछ भी नहीं करना है, कुल्ला भी करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठ के बिस्तर पर उस ईश्वर को अपने परमात्मा को याद करें थोड़ी देर के लिए, अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर पे जहाँ टीका लगता है उस जगह पर ध्यान करते हुए उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, और अपने लिए पूरे दिन के लिए कि आज जो हमें मिला है और ये पूरा ही दिन हमारा और हमारे बच्चे के लिए अच्छा गुजरे, इसी तरह से नित सिर्फ 5 मिनट का ईश्वर का ध्यान भी आपको उतना ही लाभ देगा जितना लंबा ध्यान आपको देता है। और शिशु के प्रति आपको जागरूक होते हुए सिर्फ उस शिशु का ध्यान करना है कि तुम स्वस्थ पैदा हो, बुद्धिमान पैदा हो, इस तरह से सोच। वो हर काम में सुबह में तो करेंगे ही, और अपना नित्य जो रूटीन है, अपना जो भी काम करती हूँ उस काम के दौरान भी अगर वो अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहें, स्वस्थ बनाना चाहें, ईमानदार बनाना चाहें या जिस भी तरह का, तो वो गर्भ में ही बना सकती हैं, क्योंकि वो ध्यान सिर्फ कोई भी नकारात्मक सोच नहीं रखना है, सकारात्मक अपना पॉजिटिव थॉट्स को रखेंगे और शिशु के बारे में ध्यान करते हुए उसे क्या बनाना है आप खुद उसको रोज बताएं। चाहे आप कोई भी काम करती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप करें, लेकिन 5 मिनट का सुबह का जो ध्यान है उस ध्यान के दौरान जरूर आप अपने शिशु के प्रति और अपने प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर के उस परमात्मा का धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करें, देखें कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर होगा। और कुछ अपने खान पान का भी ख्याल, थोड़ा सा सैर भी कर ले, अगर आपको समय मिलता है तो सुबह आधे घंटे का सैर जरूर करें। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, रक्त संचार बहुत सुचारू रूप से होगा, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है जितना करेंगे उससे खाने का भी कोई प्रभाव नहीं है। जैसे खा लिया खाना उसके बाद नहीं करते हैं लोग कि नहीं नहीं करना है प्राणायाम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो लोग हम लोग जो करते हैं, पूरे फेफड़े में श्वास को भरना है और फिर खाली करना है, बाएं नसिका से लेना है श्वास, दाहिने नाक को बंद करके बाएं नसिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे और पूरे फेफड़े में भरेंगे, और फिर से अपने दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं से सांस लेना और फिर आप श्वास को खाली कर देंगे। दाहिने से लेंगे बाएं से लेंगे, दाहिने से खाली करेंगे और दाहिने से

0: श्वास भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे और इसमें उंगली का यूज होगा, दाहिनी तरफ अंगूठे का और बाईं तरफ आपके रिंग फिंगर का
1: जी।
0: बंद करते हुए इस तरह से आप आधा घंटा भी कम से कम समय, दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा ही दीजिए लेकिन आधा घंटा का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का हर महिलाएं जो गर्भवती हैं अगर करेंगी तो उनके बच्चे को मेरी एकदम गारंटी है कि कोई बीमारी नहीं होगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: रेणु जी, गर्भावस्था के दौरान कब तक ये योगा क्रिया जाए और कब ये योग क्रियाएं बंद कर दिया जाए?
0: ये 3 महीने से शुरुआत करके 9वें महीने तक किया जा सकता है
1: जी।
0: खास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार का जाप और भ्रामरी का, जिससे कि हमारा मन बिल्कुल कभी भी तनाव में नहीं आएगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और आप जैसा बनाना चाहेंगी वैसा बनेगा ही, कांटेक्ट उससे उसी तरह बना के रखेंगे जैसा चाहेंगे। मेरी तो, मैं तो बोल चुकी हूँ, निश्चित है,
1: पूरी गारंटी,
0: हाँ हाँ पूरी गारंटी है
1: कि शिशु स्वस्थ होगा,
0: स्वस्थ भी होगा और आप जैसा बनाना चाहेंगे। हाँ, एक प्रिकॉशन जरूर है कि जितना मोबाइल से दूरी बना कर के, कुछ महीनों की बात है, मोबाइल जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा
1: जी। रेणु जी, हमारे गर्भवती माताओं बहनों को आप क्या कहेंगे कि टेंशन से आप दूरियां बनाएं और वक्त निकालें, थोड़ा सा वक्त निकालें अपने व्यस्त समय से। हम तो ये कहेंगे अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय को आप चुरा लीजिए अपने लिए और अपने गर्भस्थ शिशु के लिए
0: जी। अगर आप समय का सही उपयोग करेंगी तो आपका बच्चा और आपका परिवार दोनों ही स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। क्योंकि आजकल के समय में अधिकतर लोग शिशु के जन्म लेते ही या पेट से ही परेशान हो जाते हैं, ये बीमारी वो बीमारी लगी हुई रहती है। आप जब इस अभ्यास को करेंगे, योग और प्राणायाम और ध्यान को, तो देखेंगे कि आपको कोई इस तरह की परेशानी हुई ही नहीं और आप बिल्कुल स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकेंगे। लेकिन हाँ, आप उसके लिए समय निकालें, कम से कम आप दिन भर में 40 मिनट आधा घंटा, नहीं तो गर्भवती हैं इसलिए 1 घंटा का समय तो पर्याप्त, आधा घंटा भले ही आप सुबह दें शाम दें, लेकिन सुबह में देंगी तो ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ा हुआ रहेगा वातावरण में, जिस कारण ऑक्सीजन जब शरीर में बढ़ेगा तो रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, जिससे कि बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे।
1: ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस गर्भावस्था के दौरान यदि हम अपने सेहत का ध्यान रखते हैं और कुछ थोड़ा सा समय हम निकाल पाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, योग क्रियाएं करते हैं, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और एक अच्छा स्वस्थ शिशु को हम जन्म दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु कुमारी पांडे जी, आप इस कार्यक्रम में और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से योग क्रियाएं करें इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, एक नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।
2: दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान सही मार्गदर्शन में किया गया योग माँ और शिशु लाभकारी हो सकता है। योग शरीर और मन को शांत और प्रसव के लिए तैयार करने में सहायता करता है। तो मित्रों, अभी हमने सुना रेणु कुमारी पांडे जी को, जो कि महिलाओं के लिए योग पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां साझा की और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। तो मित्रों, चर्चा और बातें का सिलसिला आगे और भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर नटवरलाल, जिसे आवाज दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। मित्रों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर और हम आपसे चर्चा करेंगे ईर्ष्या और द्वेष करता आपका मन विभेद। तो आइए इस खास विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो तब जन्म लेती है जब हम दूसरे की सफलता, सुख सुविधा या उपलब्धियों को देखकर स्वयं को उनसे कम समझने लगते हैं। यही द्वेष ईर्ष्या का अगला चरण है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखने लगता है। ये दोनों भावनाएं मन को शांति को छीन लेती है और आपसी संबंधों में दूरी पैदा करती है। आज के समय में लोग एक दूसरे की अच्छी नौकरी, सुंदर घर या सामाजिक प्रतिष्ठा देखकर अक्सर तुलना करने लगते हैं। तुलना से असंतोष पैदा होता है और असंतोष से ईर्ष्या जन्म लेती है। धीरे धीरे यह भावना मन में विभेद और कटुता का कारण बन जाती है। परिवारों में भाई भाई के बीच, रिश्तेदारों के बीच और मित्रों के बीच भी कई बार मनमुटाव का कारण यही ईर्ष्या और द्वेष बनते हैं। साथियों ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को अपनी प्रगति से दूर कर देती है। वह अपना समय और ऊर्जा दूसरे को देकर दुखी होने में खर्च करता है, जबकि उसे अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर द्वेष सामाजिक सौहार्द को नष्ट करता है और आपसी विश्वास को कमजोर भी करता है। दोस्तों इसी समस्या का समाधान सकारात्मक सोच और संतोष की भावना में छिपा है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और संघर्ष अलग अलग होते हैं। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि हम दूसरों की उपलब्धियाँ पर प्रसन्न होना सीख लें तो हमारे मन में प्रेम, सहयोग और सद्भाव का विकास होगा। परिवार और समाज में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक यह है कि हम ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहे। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और सम्मान के माध्यम से ही मजबूत रिश्तों का निर्माण किया जा सकता है। मित्रों अंत में यही कहना चाहूंगा कि ईर्ष्या और द्वेष मन के अंधकार है, जबकि प्रेम और सद्भाव प्रकाश है। हमें अपने मन की सकारात्मकता का दीप जलाना चाहिए ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र एकता का भाईचारा बना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा का विषय था बीती की विसारना ही अच्छा। भेंटवार्ता का विषय था गर्भावस्था के दौरान योग क्रियाएं। भेंटवार्ताकार थे रेणु कुमार पांडे। चर्चा का विषय था ईर्ष्या और द्वेष करता आपका मन विभेद। भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

श्रोताओं, आपको बताते चले, अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची 10:30 से। 11:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। 12 बजे हम लेकर आएंगे गृह लक्ष्मी। चर्चा का विषय होगा इसके अंतर्गत मन को शांति और सुकून देता संगीत, और विशेष में गीतों भरी कहानी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। 12:30 पर आप सुनेंगे शैक्षिक प्रसारण। वार्ता का विषय योग के सिद्धांत और स्वास्थ्य लाभ। वार्ताकार कांतिलाल, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का, और प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

श्रोताओं, आप सुनेंगे विशेष 3:10 पर पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। 3:55 पर आप सुनेंगे पीएम किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त।

जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मीनाक्षी, आपको मेरा नमस्कार जोहार। श्रोताओं, कहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं, हर सीखा हुआ पाठ एक दिन काम आता ही है। जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई चाहे किसी भी रूप में हो, वह इंसान को जीवन में बेहतर बनाने में ही सहायक होती है। कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता और वह व्यक्ति के भीतर विचारशीलता, समझदारी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा करता है। पढ़ाई का असर सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से ही नहीं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक होती है।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम है जोहार रांची। श्रोताओं, और अब मौसम का हाल। तो मॉनसून ने अपना असर अब दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान संताल परगना, कुल्हान, रांची और आसपास के इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। शुक्रवार यानी कल सुबह रांची के नामकुम समेत अन्य इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों तक कोल्हान और संताल परगना के सभी जिलों सहित गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी और हजारीबाग में तेज आंधी के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है और पिछले 24 घंटों की तुलना में अधिकतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। रांची के अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री जबकि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के पारे में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट आई है। न्यूनतम पारे में 4 डिग्री की गिरावट आने से राजधानी का मौसम काफी सुहावना हो चुका है और मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रांची सहित राज्य में अगले दो दिनों के दौरान आंधी के साथ बारिश होगी। तो ये है मौसम का हाल। और अब मौसम के हाल के साथ एक गीत भी।

जोहारा जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इतिहास की ओर। देखते हैं इतिहास के पन्नों में आज क्या है खास। आज है 20 जून 1858 में ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और इसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ था आज के दिन। 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है लोगों के लिए खुला आज के दिन। आज का आज यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। और 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी आज के दिन। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमिर कैमनिक को हराकर पांचवा फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था आज के दिन यानी 20 जून को। 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। और आज पश्चिम बंगाल दिवस है। 1947 के विभाजन के समय पश्चिम बंगाल राज्य के गठन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और एक और खास दिन है आज श्रोताओं, आज है 20 जून तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लाखों शरणार्थियों की कठिन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाना है, साथ ही साथ हर साल शरणार्थियों की संख्या में हो रही उल्लेखनीय वृद्धि के प्रति आगाह करना भी है। हर साल 20 जून अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करने का अवसर होता है जिन्हें युद्ध, संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपने घर और मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही यह एक अनजान जगह पर नया जीवन बिताने में बनाने में एक और उनके साहस और दृढ़ता का सम्मान करने का भी अवसर है। तो ये उन लोगों के लिए खास दिन है श्रोताओं, जो अपने घर परिवार से, अपने देश से दूर रहते हैं,

एक बार फिर से स्वागत हमारे श्रोताओं का जोहार रांची कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारा दिल छोटा सा दिल है, हृदय है, जिसे लंबे समय तक जीवंत बनाए रखने

के लिए हमें बहुत सारी सावधानियों को अपनाना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है अपने दिल का। और सौभाग्य से जीवन शैली में बदलाव और सक्रिय आदतों के माध्यम से कई हृदय संबंधी बीमारियों को रोका भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आहार, जिसका हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित और विविध आहार पर जोर देना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, मीठे स्नैक्स और अत्यधिक नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए, यानी हमें प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि मछली है, अलसी के बीज हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। और शारीरिक गतिविधि, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए। तो अपनी दिनचर्या में नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करना हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसके लिए आप तेज चलना, तैरना, साइकिलिंग, इसके अलावे नृत्य जैसी गतिविधियां आप कर सकते हैं। फिटनेस में सुधार कर सकते हैं, रक्तचाप कम कर सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। श्रोताओं, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने रक्तचाप और ब्लड शुगर की भी निगरानी रखनी पड़ती है, और इसकी निगरानी के तहत हम अपने दिल को, जो हमारा दिल है, उसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके लिए एक और अहम बात है श्रोताओं, धूम्रपान, जो कि हृदय रोग के लिए सबसे जोखिम भरा कारक है, उसे धूम्रपान को हमें अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। ये बहुत ही हानिकारक है हमारे दिल के लिए। लगातार तनाव आपके हृदय स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। ध्यान, गहरी सांस लेने की व्यायाम और योग या प्रकृति में समय बिताने जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। और योग की बात आई है श्रोताओं, तो आपको बताएं कि आप सभी जानते हैं कल है योग दिवस, और योग का महत्व सिर्फ योग दिवस के दिन ही नहीं, योग का महत्व हर रोज़ है, क्योंकि योग को अपनाकर ही हम निरोग रह सकते हैं। तो इसकी भी यहाँ बहुत महत्ता है, हम अपने स्वस्थ दिल के लिए भी योग को अपना सकते हैं। और स्वस्थ वजन बनाए रखें, यह भी जरूरी है। शरीर का अधिक वजन हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है और हृदय रोग विकसित होने का जोखिम भी बढ़ा देता है। संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के संयोजन के माध्यम से स्वस्थ वजन प्राप्त हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे वजन कम करने पर ध्यान देना चाहिए, क्रैश डाइट से बचना चाहिए, क्योंकि तेजी से वजन कम करना हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्रैश डाइटिंग हम ना करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हृदय रोग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। तो आप अपने बीपी और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी समय समय पर करते रहें, साथ ही ब्लड शुगर की भी जांच करते रहें। और एक ऐसी चीज़ जिसे हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है पर्याप्त नींद। दिल की सेहत के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खराब नींद और अपर्याप्त नींद उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं में योगदान दे सकती है। तो हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद हमें लेने का लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए। तो अपने छोटे से दिल का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।

कार्यक्रम है जोहार रांची। तो श्रोताओं, आपको एक रोचक बात भी बताएं हम कि अब अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी स्मार्ट टिफिन भेजा जाएगा। जी हां, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट का भोजन खास स्मार्ट स्टील टिफिन बॉक्स में अब भेजा जाएगा। इसमें विशेष सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक लगे हैं जो भोजन की शुद्धता पर नजर रखेंगे और इसकी लाइव जानकारी धरती पर भेजेंगे।

जोहार रांची कार्यक्रम है और अब बातें करते हैं सैर सपाटे की। तो जून का महीना चल रहा है और जून का महीना नैनीताल में एक अलग ही तरह का शांत आकर्षण लेकर आता है। साफ आसमान, ठंडी हवाएं और झीलें इतनी शांत की मानो दर्पण जैसी लगती हैं। जून में भारत में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से ये एक है। जब गर्मियों की भीड़ कम हो जाती है और पहाड़ियों की शांति और सुकून का माहौल छा जाता है। इस समय उत्तराखंड पैकेज बुक करने का मतलब है कि आपको शहर का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। नैनी झील में नाव की सैर, मॉल रोड पर लंबी सैर और धुंध भरी सुबहें जो किसी पुराने पोस्टकार्ड से ली गई तस्वीर जैसी लगती हैं। और नैनी ताल आप जाएं तो वहाँ नैनी झील, नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन मॉल, मॉल रोड और नैनीताल चिड़ियाघर आप वहाँ जा सकते हैं। और नैनीताल में आप नैनी झील में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ियों के हवाई दृश्य के लिए नैनीताल में पैराग्लाइडिंग का प्रयास भी आप कर सकते हैं। स्नो व्यू तक रोप वे की सवारी भी आप कर सकते हैं। मॉल रोड पर स्मृति चिन्हों की खरीदारी कर सकते हैं और तिब्बती बाजार में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको वहाँ करने के लिए। तो नैनीताल जैसी खूबसूरत जगह अगर आपको घूमने का मौका मिले तो ऐसा मौका तो आप नहीं छोड़ेंगे।

और श्रोताओं, आपको बताएं कि कल यानी 21 जून को 12वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो बुजुर्गों में गतिशीलता, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर विशेष जोर देती है। तो योग का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत है, ये हम सभी जानते हैं, और हर आयु वर्ग के लिए है। तो इस खास दिवस के दिन आप योग को जरूर अपनाएं।

जोहार रांची कार्यक्रम है। श्रोताओं, और आपको एक और अद्भुत बात बताएं कि पहाड़ पर कृत्रिम बर्फ से दूर अब किया जा रहा है जल संकट। हिमालय की गोद में बसे लद्दाख के पहाड़ी गांव इन दिनों जल संकट को दूर करने वाले अनोखे चमत्कार का गवाह बन रहे हैं। पथरीले और सूखे ठंडे रेगिस्तान में जहां बारिश नाम मात्र की होती है, वहां कृत्रिम बर्फ के पिरामिड इंसानी बस्तियों और खेतों की प्यास बुझा रहे हैं। और इसमें क्या है खास, ये भी बता दें आपको, सौर ऊर्जा से चलता है ऑटोमेटेड आइस रिजर्वर सिस्टम। तापमान गिरते ही कंप्यूटर पाइप का पानी खुद खाली कर देता है। यह सिस्टम धुंध की बौछारें छोड़कर बर्फ की सटीक परतें बनाता है। और पहले क्या परेशानियां होती थी इसके ना होने से, ये भी बता दें आपको कि हाड़ कपाने वाली ठंड और पुराने तरीके से लोग परेशान थे। कृत्रिम बर्फ बनाने की शुरुआत साल 2010 के आसपास हुई थी। सर्दियों में पहाड़ों से बहने वाले पानी को पाइप के जरिए नीचे लाकर हवा में छिड़का जाता था, जो ठंड के कारण जमकर बर्फ के ऊंचे टावरों का रूप ले लेता था। यह तरीका काम तो आया, लेकिन शून्य से 30 डिग्री नीचे के तापमान में लोहे के पाइपों में पानी जमने और उनके फटने का डर हमेशा बना रहता था। इस बर्फ को बचाने के लिए किसानों को जमा देने वाली रातों में पहाड़ों पर पहरा देना पड़ता था, तो इससे बहुत राहत मिली है, तो ये एक अच्छी खबर है।

और इस गाने के साथ ही अब जोहार रांची कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हुआ है। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और आप सबों के लिए ये है पहला गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम आदमी खिलौना है। और इस गीत को सुनना चाहते थे गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमारे श्रोता हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। झारखंड बड़ा बांबो सुपाईसाई से हमारे श्रोता थे देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा प्रकाश और देवेन। चक्रधरपुर से आप थे चक्रधरपुर ग्राम गोलिया लोहर से आप थे कोमल बेसरा, बासंती, अनु, वनमाली, पूजा और सिद्धि कुमारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता इस गीत को सुनना चाहते थे ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। और इसी गीत को दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हमारे श्रोता सुनना चाहते थे प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है बलमा फिल्म से आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: Cena.
1: आपकी पसंद में एक बार फिर से स्वागत है। और अब अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बताएं कि इस गीत के लिए फरमाइश कहां कहां से आई है। सबसे पहले फरमाइश आई है कोल सिटी बरकाकाना से। आप हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहब्बत अफजल इब्राहिम। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा। सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी ने सुनना चाहा है सड़क फिल्म का ये गीत, जिसमें अनुराधा पौड़वाल की आवाज़ आप सुनेंगे, सुरेंद्र साथी के बोल हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

और इस गीत के साथ ही आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 12 बजे हैं और अब वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी में आज आपके साथ हैं मधु।

हवाओं में सुमन सुगंधा, कानों में पक्षियों की मधुर चहक, खुले जब नींद से नयन आपके, हो उसमें खुशियों की झलक। सप्रेम नमस्कार सखियों, हृदय तल से स्वागत आप सभी का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज आपके साथ कार्यक्रम की इस यात्रा में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी मधु। सखियों, दिन के 12 बजे का यह समय, जब सूर्य की किरणें चहु ओर धरा को आलोकित करते हुए अपने चरम पर होती हैं और हम आप कार्यक्रम गृह लक्ष्मी के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, दिन के वैसे खास समय पर ढेरों बातों को लेकर, कुछ अपनी सुनाने, कुछ आपके हित में बताने के लिए। सखियों, कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे कानों में ब्रह्मांड की दी गई सौगात आवाज सदैव किसी न किसी रूप में सुनाई पड़ती रहती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यदि ये स्वर न होते तो दुनिया कैसी होती? क्या हम उस संगीतमय जीवन को जी पाते और हमारा जीवन उतना ही मधुर होता जितना है? पक्षियों के कलरों में संगीत, हवाओं की सनसनाहट में संगीत, गिरते पत्तों की सरसराहट में संगीत, वर्षा की टिप टिप करती बूंदों में संगीत, नदियों की इठलाती धाराओं में कलकल का गूंजता संगीत, झरनों के बहते जल के झरझर में संगीत, समुद्र की उठती गिरती लहरों में संगीत, जानवरों की आवाज में घुलता संगीत, मानव के चलते पांव में संगीत, यानी कण कण में रचा बसा है ये संगीत। महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना था सखियों कि संगीत ब्रह्मांड को आत्मा, मन को पंख, कल्पना को उड़ान और हर चीज को जीवन प्रदान करता है। सच कहा जाए सखियों, तो संगीत ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति का एक ऐसा खूबसूरत माध्यम है जो सीधे दिल से उतरकर अंतरात्मा तक की यात्रा तय करता है। इतना ही नहीं सखियों, संगीत हमारे मूड, भाव और विचारों तक पर असर डालने की ताकत रखता है। अध्ययन बताते हैं कि जोशीला संगीत जहां मन को तरोताजा और उर्जित करने की ताकत रखता है, वहीं शांत संगीत हमारे मन को शांत और समृद्ध करता है। अब तो कई बीमारियों में संगीत के सरगम का प्रयोग करके रोगी को ठीक भी किया जाने लगा है। वैसे हमारी संस्कृति में संगीत चिकित्सा पद्धति का उपयोग वैदिक काल से ही होने लगा था सखियों, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं। तभी तो ओम का स्वरनाद तब से आज तक बहुउपयोगी सिद्ध हुआ है। भगवान शंकर के डमरू से लेकर लीलाधारी श्री कृष्ण की मुरली तक में सरगम के धुन ही सुनाई पड़े हैं हम लोगों को सखियों। ज्ञान की देवी वीणा पाड़ी के वीणा की झनकार हो या फिर सूर तुलसी के काव्यों की धार, सब में संगीत ही समाहित है सखियों। महात्मा गांधी के अनुसार मधुर संगीत आत्मा के ताप को नाश करता है, इसीलिए तो संगीत हमारे सुख का साथी बनता है तो दुख में भी हौले से मन को सहलाता है। जहां हम खुश मन को आइए बहार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम

0: बांट ले। सुनाने का मन करता है वही थके हारे मन को, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, गीत सुनाकर हम नई प्रेरणा देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संगीत सुनने से हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जो डिप्रेशन, एंजाइटी और गुस्से को ठीक करता है। ऐसे में इस आपाधापी भरी जिंदगी में जहां सभी भाग दौड़ रहे हैं और मानसिक तनाव रोग और तमाम तरह के तनाव से घिरते जा रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा समय संगीत के साथ ज़रूर बिताइए। कुछ गुनगुनाकर, कुछ गीत गाकर, कुछ गीत सुनाकर, हारमोनियम, गिटार या अपने मनपसंद वाद्य यंत्रों को भी बजाकर, उस पर साज सजाकर, आपको जैसे भी अच्छा लगे और मन प्रफुल्लित हो वैसे सुने, कुछ समय खुद के लिए निकाल कर। देखिएगा प्रकृति का दिया उपहार फरनाद कैसे आपके मन को देगा सुकून और आराम। अब से क्यों ले लेते हैं छोटा सा अंतराल, पुनः हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुनः स्वागत है सखियों आप सभी का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आज है आपके साथ आपकी रेडियो सखी मधु। सखियों आज शनिवार है और हमें पता है कि आज के दिन का हमारी सखियों को रहता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि आज कार्यक्रम की झोली में होती है आप सभी के लिए एक प्रेरक गीतों भरी कहानी। तो आज भी चलिए सुनते हैं गीतों भरी कहानी। शीर्षक है सीख, लेखन और वाचन मधु चौबे यानी कि आपकी इसी सखी का है। तो आइए सुनते हैं गीतों भरी कहानी सीख। बच्चों अगले रविवार से तुम लोगों के स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने वाली है, ऐसे में क्यों ना आपकी बार हम लोग नैनीताल चला जाए। रेखा जी ने ज्यों ही बच्चों के सामने घूमने का प्रस्ताव रखा, उनके दोनों बच्चे कुहू और पिंटू का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद बिना कहीं मिल गई हो। भाई बहन दोनों खुशी से उछलते हुए बोले, हाँ हाँ माँ, वहां तो बहुत मजा आएगा। फिर माँ रेखा के नजदीक आकर गलबहिया करते हुए बेटी कुहू खुश होकर बताने लगी, वहां ना मेरी हिंदी वाली मैम भी जा चुकी हैं पिछले साल, वो बताती हैं कि बहुत ही सुंदर जगह है। अब भला छोटा भाई पिंटू भी कहाँ चुप रहने वाला था, तुरंत बोल पड़ा, रीता मैम भी वहां जा चुकी हैं, वो बताती हैं कि वहां एकदम शुद्ध और ताजी हवा बहती है और पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और उस पे हरियाली भी है बहुत ज्यादा, और एक ताल भी है वहां, उसमें सब लोग नाव से घूमने जाते हैं, हम लोग भी घूमने जाएंगे ना माँ। पिंटू का मासूम सवाल सुनते ही रेखा जी हंसते हुए बोली, अरे बिल्कुल घूमोगे, अब तुम दोनों बच्चे चलकर जल्दी से अपना होमवर्क कर लो और

रविवार का दिन आ चुका है। इसी दिन का तो कुहू पिंटू दोनों भाई बहन इंतजार कर रहे थे। शाम को गाड़ी पकड़नी है जो सीधे रामनगर ले जाकर उतारेगी, वहां से फिर टैक्सी से आगे की यात्रा।

दोनों बच्चे अपना अपना छोटा छोटा बैग तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कपड़े, ब्रश, कंघी इत्यादि रख दिया। इसके अलावा मम्मी से मांग कर एक कॉमन बैग भी बनाया, जिसमें उन लोगों ने कुछ बिस्किट वगैरह, खाने की वस्तुएं, कुछ खेलने के सामान और प्राथमिक चिकित्सा किट रखा। तभी कुहू को याद आया कि अरे, अपने चित्रकारी का सामान भी रख लो, क्या पता सुंदर दृश्यों को देखकर बनाने का मन कर जाए, तो वहाँ कागज, पेंसिल, रंग और रबर वगैरह कहाँ से लाऊंगी। इसी समय पिंटू ने भी अपनी दूरबीन ये कहते हुए रखी कि दीदी, दूर की चीजों को हम लोग इसी से देखेंगे तो साफ और बड़ा दिखेगा। अगले दिन सुबह सभी लोग नैनीताल के होटल में जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होने में लगे हुए हैं। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही ज्यादा समय घूमने के लिए मिलेगा, और नीलेश गाड़ी वाले को बुला भी चुके हैं। कार ड्राइवर के द्वारा सबसे पहले लोक भवन गोल्फ कोर्स ले गया गया, जहां कार से उतरते ही पिंटू दौड़ लगाते और बाहों को फैलाते हुए बोला, आहा, कितनी सुंदर जगह है, देखो ना दीदी, चारों तरफ कितने ढेर सारे पेड़ हैं। पिंटू की बात सुनते ही कुहू तुरंत बोली,

उधर देखो, वो देवदार और ओक के पेड़ हैं। मैंने किताबों में इसकी तस्वीर देखी थी, आज सामने से भी देख लिया। फिर रेखा जी की तरफ देखते हुए बोली, कितनी हरियाली है ना माँ, यहाँ हम लोगों को शुद्ध हवा भी मिल रही है। रेखा जी मुस्कुराते हुए पिंटू कुहू को समझाते हुए बोली, यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है, यहाँ हमें शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण जो मिलता है।

रेखा जी, नीलेश जी, दोनों बच्चे पिंटू और कुहू, सभी अपने अपने तरीके से प्रकृति के इस नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाने में मग्न हैं।

रेखा जी जहां घूम घूम कर पेड़ उनके पत्तों और पहाड़ को देख विभोर हो रही हैं, वहीं पति नीलेश प्रकृति के इस सुंदर दृश्यों को मोबाइल में कैद करने में व्यस्त हैं। उधर दोनों बाल गोपाल कभी पोज देकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो कभी दूरबीन आंखों के नजदीक लगाकर मनोरम दृश्यों को और करीब से महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से निकलने के कारण रेखा जी को अब थोड़ी थोड़ी भूख महसूस होने लगी थी। रेखा जी को याद आया कि चिप्स और बिस्किट के पैकेट बच्चों ने एक बैग में रखा था, लेकिन किस बैग में ठीक से याद नहीं। इसीलिए वे कुहू की तरफ देखते हुए बोली, बेटा अब हम लोग कुछ खा लिया जाए। वो चिप्स वगैरह का पैकेट निकालो ना, तुम लोग भी खा लो, हमें भी दे दो। कुहू तुरंत बैग से कुछ पैकेट निकालकर माँ को देती है और फिर भाई पिंटू की ओर दौड़कर चली जाती है, ये कहते हुए कि अभी मैं नहीं खाऊंगी माँ, आपको और लेना होगा तो ग्रीन वाले बैग में से निकाल लीजिएगा। क्योंकि इस मनोरम वादियों के आनंद के आगे बच्चों को भूख कहाँ थी। भाई के साथ खेलने और रमणीय दृश्यों को देखते देखते अचानक कुहू को याद आता है कि मम्मी को चलकर बता दूं कि खाली रैपर को कहाँ रखना है। दरअसल कुहू और पिंटू ने अपने बैग में एक बड़ा सा पॉलीथीन का थैला भी रख लिया था ताकि रास्ते में कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो खाली रैपर और बोतलों को इधर उधर ना फेंकना पड़े, वे इसी थैला में रखते जाएंगे और जहाँ डस्टबिन दिखेगा उसी में डाल देंगे, और यदि नहीं दिखेगा तो जब शाम को वापस होटल में लौटेंगे तो वहाँ के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। कुहू खेल बीच में रोकते हुए दौड़कर माँ के पास पहुँचती है और बोल पड़ती है, माँ माँ रुकिए, पैकेट फेंकिएगा नहीं, मैं आती हूँ। कुहू की ऐसी बात सुनकर रेखा जी चौंकती हैं, पागल है कुहू, खाली रह पर फेंकू नहीं तो क्या करूं, ये क्या कह रही है मेरी बेटी मुझसे, सोचने लगती हैं। पति नीलेश भी कुछ खास समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों पैकेट को फेंकने से रोक रही है उनकी बेटी अपनी माँ को।

लेकिन रेखा जी भी कहाँ रुकने वाली थी। बिस्किट और चिप्स की खाली रैपर उस गोल्फ गार्डन की हरी हरी घास पर फेंके जा चुके थे, जो हवा में इधर उधर उड़ने लगे थे।

कुहू रेखा जी के निकट आते ही बोली, माँ आपने खाली रैपर क्यों फेंक दिया। रेखा जी कुहू की बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। वो तुरंत प्रश्नवाचक स्वर में बोली, अरे अंदर बिस्किट और चिप्स खत्म हो गए हैं तो रैपर तो फेंका ही जाएगा ना कुहू। कुहू बड़े ही शांत भाव से माता पिता की तरफ देखी और बोली, आप समझी नहीं माँ, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं ना कि गंदगी फैलाने। मेरी मैम कहती हैं कि कहीं भी घूमने जाओ तो पहला शपथ लो कि उस जगह को गंदा नहीं करना है। नीलेश अब तक तो चुप थे, पर अब उनसे भी नहीं रहा गया। सोचे, बेटी बच्ची है, मैम ने कह दिया और ये मान गई। वे तुरंत बोले, इधर देखो कुहू, सभी ने तो कचरे फेंके हैं, ऐसे में एक दो रैपर फेंकने से क्या ही होगा। तब तक बेटा पिंटू भी समीप आकर माता पिता और दीदी की बातों को ध्यान से सुनने लगा था। वह समझ चुका था कि माजरा क्या है। पिता की बात खत्म होते ही पिंटू बैग में रखा हुआ पॉली बैग निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, पापा हम और दीदी ये सब कचरा के लिए पॉली बैग लेकर आए हैं, इसमें रखकर होटल में ले जाएंगे और वहाँ के डस्टबिन में डाल देंगे, इससे ये गार्डन भी साफ रहेगा और हम लोग मैम की बात को भी मानेंगे तो मैम भी खुश होंगी, है ना पापा। ये तो तुमने सही कहा बेटा, तुम लोग भले ही उम्र में हम लोगों से छोटे हो पर हो तो हम दोनों से समझदार, कहते हुए नीलेश दोनों बच्चों का माथा चूम लेते हैं और रेखा जी गौरवान्वित नैनों से देखते हुए चल देती हैं अपने फेंके रैपरों को उठाकर पॉलीथिन में रखने के लिए।

0: सखियों, अभी आपने सुना गीतू भरी कहानी सीख। कहानी का लेखन और वाचन मधु चौबे यानी कि मेरा ही था। सखियों, अब चलते चलते एक जानकारी आपको दे देते हैं कि आज विश्व शरणार्थी दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में रह रहे शरणार्थियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और शरणार्थियों को आदर सम्मान देना जो किसी विशेष वजह से अपना घर बार और देश छोड़कर दूसरे जगह विस्थापित रहने के लिए बाध्य हैं। सखियों, बातें तो अभी और भी बहुत सारी करनी थी आपसे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि अब स्टूडियो की घड़ी इशारा करने लगी है। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी, इस वादे के साथ कि नई कलेवर नई बातों के साथ फिर होगी कभी मुलाकात। दीजिए अपने रेडियो सखी मधु को आज्ञा। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण। वार्ता का विषय है योग के सिद्धांत और स्वास्थ्य लाभ। वार्ताकार हैं कांतिलाल, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का है और प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: लीजिए, प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता योग के सिद्धांत और स्वास्थ्य लाभ। वार्ताकार हैं कांतिलाल।
1: योग दक्षिण भारत से उत्पन्न पद्धति है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाती है। योग संस्कृत भाषा का एक शब्द है, युज। यह एक मानसिक आध्यात्मिक अनुशासनों के लिए सामान्य शब्द है। योग एक तपस्वी अनुशासन है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग विद्या की विविध शाखाओं को मानव कल्याण के लिए प्रतिपादित किया है। योग विद्या सृष्टि के प्रारंभ से ही विद्यमान है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा है, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना होता है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत भारत की सिंधु सरस्वती से हुई थी। योग को प्रमुख चार चरणों में विभाजित किया गया है, वैदिक, पूर्व शास्त्रीय, शास्त्रीय और आधुनिक। भारतीय दर्शन में योग विद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्या सभी विद्याओं से ऊपर और विशेष स्थान रखती है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, सभी में योग का वर्णन मिलता है। सभी गुरुओं ने योग को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। महर्षि व्यास, पंडित राम शर्मा आचार्य, सभी ने योग को बहुत ही उत्तम और आत्मा परमात्मा के मिलन का रास्ता बताया है। योग एक कला है, यह विज्ञान से भी संबंध रखता है। योग शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। योग शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। योग मन को शांत और स्थिर करती है। योग को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। तीन प्रकार के योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग हैं। वैसे हठ योग, राजयोग भी हैं। कर्म योग में बिना किसी स्वार्थ का काम किया जाता है। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण का मार्ग है। ज्ञान योग विवेक और ज्ञान का मार्ग है, जिसमें आत्मचिंतन और दर्शन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने ही योग के ज्ञान को एकत्रित कर के व्यवस्थित रूप दिया। आध्यात्मिक परंपरा में भगवान शिव को पहला योगी माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया। आधुनिक योग को महर्षि पतंजलि के रूप में दिए। इन्होंने योग को धर्म और अंधविश्वास से बाहर निकालकर जन जन तक पहुंचाया और इसे वैज्ञानिक रूप दिया। योग का हर काल में अपना महत्व रहा है। आज के आधुनिक काल में योग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके कई रूप हैं। योग एक प्राचीन जीवन विज्ञान है। इसमें आत्म साक्षात्कार एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। योग के कई सिद्धांत हैं। इसके पांच प्रमुख सिद्धांत हैं, आसन, प्राणायाम, उचित विश्राम, उचित आहार और पोषण, सकारात्मक सोच और ध्यान। योग में आसन का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के शारीरिक बनावट पर आसन का प्रभाव पड़ता है। सही आसन पर बैठकर किया गया प्राणायाम श्वसन क्रिया के लिए फायदेमंद होता है। योगासन शब्द आसन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सही आसन, उचित विश्राम होना चाहिए। योग के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। जैसे परिवेश में हम रहते हैं, हमारा उठना बैठना, संगति का प्रभाव हमारे मन को विचलित करता है। योग इसको सही करने का काम करता है। यह हमारे लिए केवल शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि नैतिक, मानसिक

और आध्यात्मिक विकास का एक संपूर्ण विज्ञान है। यह एक सहायक चिकित्सा पद्धति है जो सिद्धांत से चलता है। यह मन और शरीर के बीच संबंध स्थापित करते हुए स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। योग के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण अष्टांग योग है, जिसमें 8 चरण होता है, जैसे यम। इसमें नैतिक अनुशासन, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य शामिल है। व्यक्तिगत अनुशासन, संतोष, तप, स्वाध्याय के भी नियम हैं। मन को किसी एक विचार पर एकाग्र करना ध्यान की सर्वोच्च अवस्था, जहां साधक और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह। कुछ व्यवहारिक सिद्धांत दैनिक जीवन में योग को उतारने के लिए भी किया जाता है, जैसे आसन शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी है। प्राणायाम करने से प्राण ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उचित विश्राम शरीर और मन को तनाव मुक्त रखता है। योग करने के लिए सात्विक और पौष्टिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास योग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सिद्धांत 2 मुख्य पहियों पर चलता है, अभ्यास और वैराग्य। उचित व्यायाम शरीर को लचीला बनाता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाने, शरीर में तनाव कम करने का अच्छा साधन है। आधुनिक जीवन शैली के कारण हम लोग सांस लेना भूल जाते हैं। हमारा शरीर ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, तब गहरी सांस नहीं छोड़ने के कारण हमारे शरीर की अशुद्धियां अंदर ही रह जाती है। प्राणायाम केवल प्रणाली को शुद्ध नहीं करता, बल्कि शरीर को सौर जाल क्षेत्र से जोड़ने में भी मदद करता है, जहां ऊर्जा का भंडार होता है। यह प्राण ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे मन को नई ऊर्जा मिलती है। इसका लाभ आसनों से अधिक होता है। इसे नियमित अभ्यास में शामिल किया करना चाहिए। योग के अनेकों लाभ हैं। यौगिक विश्राम या श्वसन शरीर को शांत करता है। निरंतर भाग दौड़ के कारण हमारा शरीर और मन अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाता है। हमारे खान पान का हमारे स्वास्थ्य पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। शाकाहारी भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। यह शरीर को भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश से अधिकतम लाभ प्रदान करता है। इसे ही जैविक आहार का नाम दिया गया है। यह आसानी से पचता भी है। हमारा मन ही हमारे शरीर को चलाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शांत और स्थिर मन आवश्यक है। सकारात्मक सोच मन को शुद्ध करने और आंतरिक शांति का अनुभव करने में सहायक होती है। जब हम किसी नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर ध्यान देते हैं, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। सकारात्मक सोच के साथ नियमित ध्यान अभ्यास मन को शांत और एकाग्र रखने में सहायक होता है। योग का सबसे बड़ा लाभ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना होता है। योग हमें जीवन को अधिक सहजता से जीने में मदद करता है। योग हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यदि हम नियमित योग का अभ्यास करते हैं, तो तनाव, शरीर में सूजन खत्म होता है। इससे शरीर में लचीलापन आता है। यह अवसाद को मिटाने में भी सहायक होता है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, उन्हें वापस उसी रूप में ले आती है। योग का महत्वपूर्ण लाभ ब्लड प्रेशर में होता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित कर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इससे हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। प्राणायाम और योग मुद्राएं शरीर की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। शारीरिक गतिविधि और ऊर्जा खर्च होने से स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। योग से हमें मानसिक और भावनात्मक लाभ भी मिलता है। गहरी सांस लेने या ध्यान से तंत्रिका

0: तंत्र शांत रहता है, मानसिक तनाव घटता है, शांत मस्तिष्क और तनाव मुक्त शरीर के कारण अच्छी नींद आती है, अनिद्रा की समस्या समाप्त हो जाती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, मानसिक अस्पष्टता बढ़ती है और याददाश्त तेज हो जाती है। योग के अनेकों अनेक लाभ हमें मिलते हैं। महाभारत रामायण काल से ही योग का वर्णन मिलता है। योग और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से निरोग रहने की भारतीय कला और विज्ञान है। योग बीमारियों से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। योग शरीर और मन के प्राकृतिक अनुकूलन को बढ़ाता है, ताकि हम तनाव और चुनौतियों को मजबूती से सामना कर सकें। इससे मानसिक अस्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह को रोकने में प्राकृतिक पूरक चिकित्सा के रूप में काम करता है। नियमित हल्के व्यायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान शामिल करके हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। योग एक वैश्विक दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि मानव का स्वास्थ्य, मानसिक शांति और हमारी पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन आपस में जुड़े हुए हैं। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना ही महत्वपूर्ण है। योग को यदि उचित मार्गदर्शन में किया जाए, तभी वह लाभदायक हो सकता है। हमारे शरीर के लिए किस योग की जरूरत है, कब विश्राम की जरूरत है, क्या खान पान उचित है, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे। आज के भाग दौड़ के जिंदगी में अपने लिए किसी के पास समय ही नहीं है। ऐसे में हमारा शरीर बीमार ग्रस्त होते जा रहा है। विज्ञान भी इसके महत्व को मानता है। देश विदेश सभी जगह योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी भारत में योग दिवस 21 जून को बड़े विस्तृत रूप में मनाया जाने लगा है। इसे हम लोग योग दिवस के रूप में जानते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी के लिए योग लाभदायक है। सरकार भी इसको आगे बढ़ाने में तत्पर है। डॉक्टर के अनुसार शरीर और स्वयं के प्रति जागरूकता लाना योग से संबंधित है। स्वस्थ बने रहने और उसमें सुधार के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समरसता बनाए रखने के लिए दैनिक जीवन में योग की आवश्यकता बढ़ गई है। इसके लिए विश्वव्यापी योग केंद्र खुल गए हैं। मुफ्त में भी योग की शिक्षा दी जा रही है। हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। योग करने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्तिगत आरोग्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। योग के माध्यम से केवल व्यक्तिगत निरोगता नहीं प्राप्त होती है, बल्कि पर्यावरण के साथ सकारात्मक संतुलन भी प्राप्त होता है। योग शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। योग आत्मचिंतन, आत्मविश्वास और बेहतर रिश्तों को बढ़ावा देने में सहायक है। वयस्क और बुजुर्ग योग से लाभ ले सकते हैं। बुजुर्गों की गतिशीलता बढ़ती है। वयस्कों में हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप में कमी होती है। योग और व्यायाम दोनों ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। दोनों के अलग अलग फायदे हैं। आने वाले योग दिवस को हम पूर्ण रूप से इसे मनाएंगे और अनेक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था योग के सिद्धांत और स्वास्थ्य लाभ। वार्ताकार थी कांति लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आप सुनवा रहे हैं लव इन टोक्यो। इस फिल्म से ये गाना जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म, इस फिल्म से है अगला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये अगला गाना है परख फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत सलिल चौधरी का और बोल है शैलेंद्र की।

फिल्म संगीत में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परम्पराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Pahar

0: की फोटोकॉपी दुकानों, साइबर कैफे तथा कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी की जाएगी। उधर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। धनबाद जिले में कुल 7 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नीट यूजी पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: लास्ट बार भी नीट एग्जाम हुआ, बहुत फेयरली हुआ और हम लोग इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे सेंटर्स में जो प्रोटोकॉल आया है एनटीए की तरफ से, कुछ गोपनीय प्रोटोकॉल भी है, वो सब फॉलो हम लोग कर रहे हैं। सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं हमारे यहाँ, बट फिर भी हम लोग सतर्क हैं और हम लोग की सभी पदाधिकारी सभी केंद्रों पर स्वयं जाकर एक बार विजिट करके देखेंगे कि कोई कमी नहीं रह जाए और त्रुटि रहित परीक्षा को इस बार निभाएंगे।
0: भारतीय सेना और वायुसेना ने रांची के नामकुम सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के तहत 9वें मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया। 5 दिनों तक चले इस विशेष शिविर में 2500 से अधिक मरीजों की जांच की गई। एक रिपोर्ट।
2: रांची के सैन्य अस्पताल में आयोजित 9वें मेगा शिविर में आंखों की रोशनी लौटाने वाली 300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की गई, जिनमें 260 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन शामिल हैं। इस मानवीय पहल का सीधा लाभ क्षेत्र के 100 से अधिक वंचित आदिवासी मरीजों को मिला। शिविर के समापन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सेना चिकित्सा कोर की सराहना करते हुए इसे सेवा परमो धर्म के संकल्प का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक देश भर में 75,000 से अधिक मरीजों की जांच और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी की जा चुकी है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची हैदराबाद और रांची दिल्ली उड़ाने तथा इंडिगो की रांची कोलकाता और रांची हैदराबाद सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की रात वाली फ्लाइट भी 1 जुलाई से बंद होगी, जबकि देवघर बंगलुरु फ्लाइट अब सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेगी, जो पहले प्रतिदिन उपलब्ध थी। गिरिडीह पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने पिछले 12 वर्षों को देश के लिए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता का काल बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक परिसर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। कल तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय और ग्रामीण किसानों को सीधे शहरी बाजार उपलब्ध कराना है। नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक दीप माला घोष ने बताया कि जनजातीय विकास परियोजना के तहत 50,000 परिवारों की आजीविका को इस पहल से सुदृढ़ किया जा रहा है।
3: आम महोत्सव का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है तो बाजार से इनको जोड़ना है ताकि उनका बिक जाए, लेकिन यहाँ की जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं जो कि मैंगो जूस, मैंगो पल्प या मैंगो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी नजर में झारखंड आए कि यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उनकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत जरूरी है, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहे या उसको प्रोसेस करे।
0: लोहरदगा और गुमला जिलों में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा के मिशन चौक के पास तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से शादी समारोह में जा रहे 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। वहीं गुमला के पालकोट में बारात से लौट रही कार के पेड़ से टकराने से दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत विवरण के साथ रांची से हमारी संवाददाता।
4: इस बार योग दिवस पर

0: राज्य में एक विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशानुसार कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल सामान्य कार्य दिवस की तरह खुलेंगे। इस सामूहिक आयोजन में प्रदेश के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक साथ योग प्रोटोकॉल से जुड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के सभी ग्रामीण व शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित योग गुरु आम लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। लातेहार के टाउन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन हुआ। लातेहार जिला पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि इस ड्यूटी मीट का मूल उद्देश्य पुलिस की पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देना है।
2: 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट जो पलामू क्षेत्र की थी उसका समापन हुआ, जिसमें कि तीनों जिले के हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण शामिल हुए। ड्यूटी मीट का उद्देश्य यही होता है कि जो पुलिस की पेशेवर दक्षता है वो किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है, किस प्रकार से वो क्षेत्र में भी लागू कर पा रहे हैं।
1: टाटा स्टील ने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के कैडेट्स आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए सम्मानित किया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर पूरे 10 साल बाद इस प्रतिष्ठित खिताब पर दोबारा कब्जा जमाया। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनटीए आज देश भर में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए कर रही है मॉक ड्रिल। झारखंड में भी खास मुस्तैदी। रांची के नामकोम सैन्य अस्पताल में सेना और वायुसेना का 5 दिवसीय मेगा नेत्र शिविर संपन्न किया गया। 300 से अधिक सफल ऑपरेशन रक्षा राज्य मंत्री ने सराहा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 शहरों के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी विमान सेवाएं। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट भी होगी निरस्त। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। लोहरदगा में ट्रक की टक्कर से 3 भाई बहनों और गुमला में कार दुर्घटना में दूल्हे के पिता ने गंवाई जान। और जमशेदपुर में टाटा स्टील ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप विजेता टीम के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति और प्रेमचंद सोई को किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं सिप्रा बोस। सुनते हैं ये दादरा।

0: अनुरंजनी के अंतर्गत आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार थी सिप्रा बोस। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद गजलें। आइए सुनते हैं ये पहली गजल भूपिंदर सिंह की आवाज में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पहले मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार।

0: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गायस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परम्पराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

0: और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जय भारती।
4: पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में। ए आर रहमान का संगीत है, फिल्म है रोजा।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और शान की आवाजों में लगान फिल्म का ये गाना। ए आर रहमान का संगीत है, जावेद अख्तर के हैं बोल।

आइए अब सुनते हैं चलते चलते, इस फिल्म से ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, आदेश श्रीवास्तव का संगीत और बोल हैं बाबू मान के।

लीजिए ये अगला गीत भी सुनिए सुखविंदर सिंह की ही आवाज में। एआर रहमान का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल। फिल्म का नाम 1947 अर्थ।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर रांची समेत झारखंड के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो जिले के गोमिया पंचायत स्थित जलमीनार परिसर में एक नए इंटेक वेल और पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कोनार नदी में निर्मित इस इंटेक वेल और नवीनीकरण परियोजना से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल की सौगात मिली है।
1: समस्या था पेयजल का, डीएमएफसी मंच से स्वीकृत करा करके उसका उद्घाटन किए हैं। लोगों को कोनार डैम का पानी मिले। पहले की जो योजनाएं थी, कई जगहों पर पानी का संचालन नहीं हो पाता था, बेहतर रूप से पानी नहीं जा पाता था। एडिशनल टंकी के बनने से अब गोमिया के आसपास के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा।
0: रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुभकामनाएं देते हुए उनके राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण, सादगीपूर्ण जीवन तथा प्रेरणादायी नेतृत्व की सराहना की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए उनके योगदान को सभी के लिए अनुकरणीय बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कल मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में भी तैयारियां की जा रही है। माहिल स्थित योगाभ्यास केंद्र में योग प्रशिक्षक नमित नाग ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली स्वस्थ बनी रहती है।
2: आज के समय में योग की बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आज योग अगर है तो हम स्वस्थ हैं। इसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें, और हमें डेली कम से कम 5 से लेकर 15 मिनट तक जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम अभी 24 घंटा में लगभग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रहते हैं, तो हमें मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है और अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है।
0: झारखंड हाईकोर्ट में नामकुम अंचल में जमीन म्यूटेशन दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच की अनुमति देने पर 2 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कैबिनेट विजिलेंस विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश दिया कि वे अपने निर्णय से एसीबी को अवगत कराएं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई 2026 को होगी। स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के तहत सीसीएल ने बेहतर कल के लिए प्लास्टिक कचरा कम करना विषय पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया। इसका मकसद एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर सीआईपीईटी रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा की और व्यवहारगत परिवर्तन व सामूहिक जनभागीदारी पर जोर दिया। मादक पदार्थों के खिलाफ जनजागरूकता अभियान को लेकर आज 5वें दिन हजारीबाग जिले के कई प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत 10 सांस्कृतिक दलों ने 20 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान लोगों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जयदीप सहनी का लिखा ये गीत था, सलीम सुलेमान का संगीत, राहत फतेह अली खां की आवाज़, फिल्म का नाम आजा नचले।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण।

0: खेला करते, और वो उपवन कौन कौन से हैं?
1: हाँ जी, गोवर्धन उपवन में देखो कुसुम सरोवर हुआ है, मानसी गंगा हुआ है, और बाकी संग संग आसपास बरसाना उपवन है, संकेत वन, गेवर वन और पीली पोखर वन है।
0: और यहाँ के अतिरिक्त हैं चमेली वन, कोकिला वन, कदम्ब वन और श्याम
1: श्याम वन।
0: वन। तो देखो हमने अपने श्रोता
2: सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, वी नाउ ब्रिंग यू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन SKM माइलानंदन, अ सोशल वर्कर एंड एंटरप्रेन्योर हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। Over the years, Shri Mailanandan has worked tirelessly for farmers, rural communities and youth. His contributions in the fields of social service, village development and education have positively impacted lakhs of lives. Speaking to Akashvani News, Shri Mailanandan recalled his journey of service, which began through entrepreneurship. Starting his career in the poultry sector, he worked closely with farmers and soon recognized the challenges they faced. To protect their interests, he established the Tamil Nadu Poultry Farmers Association. One of his notable contributions was persuading the Tamil Nadu government to include eggs in the state's nutritious meal program. This initiative not only improved nutrition among children, but also provided much needed support to poultry farmers across the state.

0: एफएम गोल्ड 100.1 सुन रहे सभी साथियों को सीमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और शुरू होता है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जी मन भावन। आपके मन को जो भाता है आप हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। अब आप मेल कैसे करते हैं? fmgoldair@gmail.com पर। और हम आपके जो संदेश हैं आपके अपनों तक पहुंचाते हैं और अपनों तक पहुंचाते हैं। कई बार आपका मन करता है कि आप अकेले ही कोई गीत सुने, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत वेलकम है जी, स्वागत है आपका। एक बार दोबारा सुन लीजिए fmgoldair@gmail.com। इस पर आप अपना संदेशा जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मन भावन प्रोग्राम में आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने दोपहर का खाना जो है यानी लंच कर लिया होगा और आप अपने रेडियो के साथ मुस्कुराते हुए हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तो ये क्योंकि आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है, हर बार मैं अपनी पसंद का कोई गाना पहली बार चलाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। और आपकी होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल, इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। और आप भी अपना इसी तरह संदेशा भेजिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपना संदेशा भेजते हैं और हम आपका संदेशा लेते हैं। लेकिन कई बार आपको भी बुरा लग जाता है जब आपका संदेशा नहीं पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश है कि ज़रूर सभी के संदेशे लिए जाएँ। गुजरात गांधी ग्राम
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज।

प्रसून जोशी का लिखा ये गाना था शंकर एहसान लॉय का संगीत, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम फिर मिलेंगे। और आइए अब सुनते हैं आशिकी टू, इस फिल्म से ये गाना। अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ें हैं, मिथुन का संगीत है, इरशाद कामिल के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज़। अगला गाना अनजाना अनजानी इस फिल्म से है। मोहित चौहान, शेखर रविजयानी और श्रुति पाठक की आवाज़ें, कुमार और विशाल ददलानी के बोल हैं, संगीत है विशाल शेखर का।

अगली आवाजें हैं केके और शिल्पा राव की, विशाल शेखर का संगीत, बोल हैं अनविता दत्त गुप्तान के, और फिल्म का नाम बचना ए हसीनों।

दबंग टू अगला गाना इसी फिल्म से है। राहत फ़तेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, साजिद वाजिद का संगीत और बोल लिखे हैं समीर अनजान ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 3:55 पर आप सुनेंगे पीएम किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त दिल्ली केंद्र से।

0: मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद
0: दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की ये है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहाँ पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country.

0: in the district and block levels and Gram Panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
0: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district, Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था। और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉ मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th,

0: श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद विच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट विच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन एंड टुडेज फंक्शन सिद्धार्थ इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर। We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी एंड आई वांट टू से दैट It won't just be the procurement of things that will happen.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है. पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहां पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhanmantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंगस्ट दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल

का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल 1 तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने।
जीडी

जीतते हुए काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार

और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधामोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा।
साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें

0: एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर है हम, मैं आरती और मेरे साथ है श्वेता। श्वेता आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, और मेरा भी अभिनंदन स्वीकार करें श्रमिक साथियों। साथियों अभी जिस तरह से बारिश का मौसम का आनंद आप सब ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल, क्योंकि मौसम तो ठीक है, बारिश होती है, लेकिन इस मौसम में ना बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है श्वेता। तो साथियों आज का समय भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली का भी है ना?

0: तो लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी तुरंत दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं। जैसे सिर दर्द, थकान, तनाव, अनिद्रा, अनपच और मोटापा जैसी समस्याएं तो आम हो गई है, बच्चों को भी हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब वक्त है कि हम फिर से पुरातन काल में लौटें, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें तप, ध्यान, यम, नियम और योग साधना को जो हमें ज्ञान दिया है उसे फिर से आत्मसात करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य परंपरा है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करता है। और योग हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान की ओर ले जाता है, जो शरीर के अंदर को ना अंदर से प्रबल बनाता है। मतलब श्वेता, जब हम ध्यान करते ना तो मानसिक रूप से हमें इतना अच्छा लगता है, हम इतना अच्छा फील करते हैं। और बहुत जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके तनाव होता है ना, अगर आप ध्यान करेंगे तो ये तनाव सा बिल्कुल दूर। और ये मैं करती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
1: बिल्कुल, और जो करेगा वही महसूस कर सकता है कि योग के बेनिफिट्स क्या हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और योग को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा साधन है। दोस्तों, नियमित योग करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। यह मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट की समस्याएं, तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी परेशानियों को कम करने में सहायक है। तो सुनने में ये सिर्फ दो शब्द है योग, लेकिन ये बहुत सारा हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजों का पिटारा है।
0: जाहिर सी बात है, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। हाँ। और ये इतने चीजों को जोड़ देता है कि फिर से हम स्वस्थ हो जाते हैं। और अक्सर हमारे मन में आता ना, जब हम बातें करते हैं और कोई हमें समझाता है कि योग करना चाहिए, तो लगता है कल से करेंगे और वो कल हमारे जीवन में कभी नहीं आता है। तो भाई, हम अपने साथियों से ही कहना चाहेंगे, साथियों आज से ही नहीं अभी से योग करना शुरू करें। और योग बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम प्रतिदिन सुबह को समय योग के लिए निकालेंगे ना, तो बेशक हम निरोगी रहेंगे और अत्यधिक ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। तो श्वेता, क्यों ना हम एक भेंट वार्ता सुनते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवेश कुमार। योग क्या है और क्यों जरूरी है, और साथ ही इनसे बातें कर रही हैं श्वेता आर्य।
1: दोस्तों, वर्तमान समय में लोगों की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, बहुत सारे लोग तनाव में रहते हैं, बहुत सारी चिंता ऐसी है कि जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते लोग अपने स्वास्थ्य को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग स्वस्थ दिनचर्या अपना करके अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन योग क्या है, योग से हमें क्या लाभ हो सकता है, योग क्यों ज़रूरी है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश कुमार। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योग है क्या।
2: यदि योग को आम भाषा में समझे तो आम लोगों को लगता है ये एक शारीरिक व्यायाम है, लेकिन ये हमारे शारीरिक व्यायाम के साथ में आत्मा को शुद्ध करने के लिए या चेतना, हमारी चेतनाओं को जागृत करने का भी एक माध्यम है। तो सिर्फ शारीरिक व्यायाम इसे नहीं समझना चाहिए, और इसके साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि ये हमारे जो चेतना है, जो आत्मा है, इनके साथ भी कनेक्शन जुड़ने का एक माध्यम है योग।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बताया कि योग चेतना को जगाने का माध्यम कह सकते हैं। योग हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है?
2: हमें मालूम है कि शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, और उन तंत्रिकाओं को हम लोग एक साइंटिफिक टर्म बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जिसको कहते हैं बैलेंस होना। योग का जो काम है उन तंत्रिकाओं को, उन सिस्टम्स का, उनको बैलेंस करना, ये योग का काम है। डिफरेंट टाइप्स के योग होते हैं जो डिफरेंट सिस्टम को हमारे बैलेंस करने में, होम्योस्टेसिस लाने में वो उनका काम होता है। तो जो हमारे पुराने ऋषि, संत, महात्मा लोग जो ये योग का दर्शन दे के गए हैं, वो जिस शरीर को जिस योग की ज़रूरत है वो पहचानते थे और उसके अनुसार वो योग उसको रेकमेंड करते थे। तो ये एग्जैक्टली आज भी बहुत सारे योग से जुड़ी संस्थाएं हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, और क्या योग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो इस चीज़ का ज्ञान देते हैं। और नहीं तो जो सिंपल योग की जो कुछ क्रियाएं हैं वो हर कोई कर सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत टफ आसन आप करने लगे

0: एकदम से आप कभी, तो वो ठीक नहीं होगा सबके लिए। लेकिन आप सिंपल प्राणायाम यदि करना चाहें तो हर कोई कर सकता है, थोड़ी सी भी ट्रेनिंग के साथ आप सिंपल प्राणायाम भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी में जो लोग तनाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर थोड़ी सी भी कुछ भी बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारियाँ, तुरंत लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, ये कितना सही है?
0: हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि लोगों को दवाइयाँ खाने की आदत हो गई है, जल्दी बीमार भी पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो चुकी है, वो अपने आप को कमज़ोर देखते हैं और जिसके कारण थोड़ा भी कुछ हो तो उसके बाद वो दवाइयों का सहारा ले लेते हैं। हमारे साइंस में, थोड़ा सा मैं साइंस पे जा रहा हूँ, एक क्वाटनरी प्रिवेंशन हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं अवॉइडेंस फ्रॉम ओवर मेडिकलाइजेशन, कि मतलब ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादा डॉक्टरों से मिलना या हॉस्पिटल जाना, इसको कम करना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोग स्वस्थ शैली ना अपनाकर वो क्यूरेटिव सर्विसेज के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ प्रमोशन पे ना ध्यान दे के। सो ये जो योग है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हेल्थ प्रमोशन के लिए, और एक ऐसा इंटरवेंशन है जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपनी बढ़ा सकते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, आप मेंटली भी फिट रह सकते हैं, जिससे आपको कम से कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग भी आएगा, आपको अच्छा महसूस होगा, आप आनंद में रहेंगे। तो ये योग का आज के डेट में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जिसको कहते हैं कि आज के दौड़ भाग की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो ये है कि आप आनंदित हमेशा रहेंगे और शरीर में कम रोग होंगे और इम्यूनिटी तो बढ़ेगा ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर की बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सर, आपने बताया है कि योग में जो आसन, प्राणायाम, ये सब मिल करके आपके शरीर को स्वस्थ तो रखते ही हैं, आपके मन को भी शांत करते हैं, और इसीलिए कहा भी जाता है कि योग भगाए रोग, क्योंकि अगर आप अपनी दिनचर्या में योगासन को अगर शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से जब आपकी सुबह जब योग से शुरुआत होगी आपकी, तो आपकी दिनचर्या जब अच्छी होगी तो आप तो स्वस्थ और प्रसन्न होंगे ही, और जब अगर आप स्वस्थ होंगे तो हर काम आपके लिए अच्छा होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो हमारा कार्यक्रम है वो श्रमिक वर्ग का है, हमारे श्रमिक साथी, उनकी दिनचर्या में तो कामकाज जुड़ा ही रहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो योग के लिए क्या करें, कौन सा आसन ऐसा करें जो वो और स्वस्थ हो सके?
0: योग पहले ये समझना है कि ये हर वर्ग के लिए है, हर आयु के लिए है, और कोई भी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या किसी वर्ग से बिलोंग करते हो या कोई भी काम करते हो, ये सबके लिए है। यदि आप स्टार्टिंग के हैं, आप बिगनर्स हैं योग के लिए, तो आपको सिंपल प्राणायाम से करना चाहिए, जिसको हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, श्वसन क्रियाएं शुरुआत में करनी चाहिए कि आप सिंपल अपने सांस पे कंट्रोल रखें। ऊपर वाले का दिया हुआ ये सांस है, अपने आप चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम रोज हर मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और ये हमें पता नहीं चलता है, वॉलंटरली अपना इनवॉलंटरली चल रहा होता है। हमें ये जो ऊपर वाले का जिस पे ताकत है, जो ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चल रहा है, हम चाहे सो रहे हों, काम कर रहे हों, स्ट्रेस में हों, स्ट्रेस में नहीं हों, ये सांस चल रहा होता है, इसी को पहला स्टेप है कोई भी योग का, कि आपको ये वॉलंटरली करना है, वॉलंटरली ले रहे हैं और खुद से छोड़ रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज के लिए, कोई भी बिगनर के लिए, जब आप योग पे आए तो सिंपल प्राणायाम, सांस लेना, सांस छोड़ना, मतलब 2 से 3 सेकंड में सांस लिए, जितना आप ले सकते हैं, जितने अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में जितना हवा भर सकते हैं, कम से कम 5 सेकंड के लिए रोके और उसके बाद फिर उसको एक्सहेल किए, फिर वो हवा को छोड़ दिए। जब आप ये धीरे धीरे कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको सांस पे अपने थोड़े देर के लिए भी, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए, आप सांस पे कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लगे इससे क्या फ़ायदा है, लेकिन इससे जो आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सेल लेवल पे होते हैं जो चेंजेस, वो आपको ऐसे प्रतीत नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा, वो चेंजेस आपको समझ में आने लगेंगे। 15 दिन में आपको ये समझ में आएगा कि योग से ये हमें फ़ायदे हो रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो श्रोतागण हैं वो जिस वर्ग से आते हैं उनको हो सकता है कि नहीं मालूम हो योग के बारे में, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआत में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और अपने सांस पे वॉलंटरली कंट्रोल करना सीखिए। जब एक बार आप आ जाते हैं उसके बाद आप YouTube के माध्यम से या बहुत सारे योग गुरु जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या फिर फिजिकली भी आप किसी योगा टीचर के दिशा निर्देश में आप कुछ योगासन सीख सकते हैं। बहुत सारे आसन होते हैं जो आपके बॉडी के लिए जो सुटेबल होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे और वो बताएंगे कि हाँ इन योगासन को आपको करना है, और धीरे धीरे योग को अपने आप नियमित रूटीन में आप ला सकते हैं, अपने रूटीन लाइफ में ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो हमारे श्रमिक साथी हैं वो दिन भर फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन ये जो आपने बताया कि अपने सांसों पर नियंत्रण रखना, यानी कि अब सुबह उठ करके आप अपने जब ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसीलिए हमारे श्रमिक साथी अगर ये करेंगे तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सर चलते चलते आप हमारे साथियों को क्या संदेश देना?
0: हमारा ये संदेश रहेगा कि हमारे सारे देशवासी योग को किसी न किसी समय पे जरूर करें और अपने नियमित इससे लाएं। और आप ये देखेंगे कि जो हमारे आजकल चाहे युवा हो या वयस्क हो, वो सारे कुछ ना कुछ नशे के आदि हो रहे हैं। ये योग उन नशाओं से मुक्ति का भी एक द्वार खोलता है। तो सारे देशवासियों से हमारा ये आग्रह रहेगा और हम ये चाहेंगे, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग सारे लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और योग इसमें बहुत बड़ी एक सहायक है। तो सारे लोग योग करें और सब कोई स्वस्थ रहें। धन्यवाद
1: सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथियों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
2: बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर देवेश कुमार ने। साथियों हम सुन रहे थे योग क्या है और क्यों जरूरी है, और इनसे बातें करी थी श्वेता आर्य। तो श्वेता, ये जानकारी पे अमल करना भी हमारी जवाबदेही है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो तभी हम, क्योंकि अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा भी हमारे ही हाथ में है, और हम प्रयास करेंगे तो बेशक हमारे सामने रिजल्ट आएगा। हम तो प्रयास ही नहीं करते, सिर्फ रोना रोता ये बीमारी वो बीमारी, डॉक्टर के पास लंबी कतार लगा लेते हैं, लेकिन योग करने से भागते हैं। तो इससे हमें बचना है, और जब हम ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरों की भी सहायता कर पाएंगे।
1: बिल्कुल। और आरती, सहायता की जो बात कर रही हैं, तो आपको मालूम है कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने और उनके विपणन यानी कि व्यापार के लिए कई डिजिटल और सरकारी मंच उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शी मार्ट पहल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे शी शॉप इन उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार और ग्राहकों तक जोड़ते हैं।
2: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने। साथियों शी मार्ट जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इस पहल के तहत क्लस्टर स्तरीय संघों में सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा विक्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह मंच बिचौलियों को हटाकर महिला उद्यमियों को सीधे वैश्विक और स्थानीय खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है। और कितनी बड़ी बात है श्वेता की, क्योंकि बिचौलिए क्या होता है ना कि जो मेहनत कर रहे हैं उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो बिचौलिए के हाथ चला जाता है।
1: हाँ,
2: तो यहाँ बिचौलिए ही हटाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मेहनत करने वाले जो श्रमिक हैं उन तक सीधा ये पैसा पहुंच रहा है।
1: और दोस्तों इसके अलावा यह महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों की पेशेवर और लाभदायक उद्यम बनाने के लिए डिजिटल कौशल और वित्तीय प्रशिक्षण देता है। तो आप भी इसकी जानकारी लेकर अपने आप को और उन्नत बनाएं और आत्मनिर्भर बनें।
2: तो फिर देख, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ना इशारा कुछ और है, तुम्हारा फेस फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बता रहा है।
1: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे दोस्त बहुत देर से जानकारियां ले रहे हैं। हाँ, तो आइए क्यों ना उन्हें एक प्यारा सा फिल्मी गीत सुना दिया जाए।
2: बिल्कुल।

0: खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दादी, कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: और श्वेता, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का पिटारा तो हमारे पास बहुत सारी रहती है ना। तो देखो, ये जो भारत सरकार ने चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा के कई नए और क्रांतिकारी आयाम जोड़े गए हैं और ये संहिताएं श्रमिकों के जीवन में वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा का एक नया दायरा तय करती है।
8: बिल्कुल। और आरती, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख नए आयाम की भी जानकारी हम अपने श्रमिक साथियों को दे दें। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
7: कॉन्ट्रैक्ट या निश्चित अवधि पर रखे गए श्रमिकों को अब प्रोरेटा आधार पर स्थायी कर्मचारियों के समान ग्रेच्युटी, ESIC और भविष्य निधि जैसे प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलेगा। और पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक का काम करना बहुत जरूरी है था, ऐसा पहले था, है ना, लेकिन जिसे नए नियम में घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
8: ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो कई सालों तक काम करते रहते थे लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता था, उनका ना PF नहीं करता था, ग्रेच्युटी फंड का लाभ तो उन्हें मिल ही नहीं पाता था। तो दोस्तों, असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम वहन करने की व्यवस्था भी शामिल की गई है। ESIC का दायरा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाओं के लिए इसे स्वैच्छिक रखा गया है, यानी कि जिस संस्थान में अगर 10 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन्हें ये सब सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और न ही वो इसमें शामिल हो सकेंगे।
7: ये पहले था, है ना।
8: हाँ।
7: तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसे स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाओं को और सुदृढ़ किया गया है और इसमें श्रमिक छोटा सा मानसिक योगदान देकर 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन का लाभ उठा सकते। ये बहुत ही अच्छा जो है स्कीम है।
8: बिल्कुल। अभी आपकी जो छोटी छोटी जो बचत जो होगी वो कल आपके लिए बहुत अच्छी आपके लिए सहायता बन सकती
7: मतलब
8: है,
7: मतलब मंथली आपको पैसा रिटर्न करेगी।
8: हाँ बिल्कुल। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है बशर्ते उनकी सहमति हो और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।
7: सभी श्रेणियों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और संबंधित चिकित्सा लाभों का अधिक स्पष्ट और सुरक्षित किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक कर्मचारी को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान किया करना अनिवार्य है और इन सुधारों के माध्यम से 94 करोड़ से अधिक लोगों को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है।
8: बिल्कुल दोस्तों, तो बस जानकारी तो है बहुत सारी, लेकिन आपको चाहिए कि इन जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं इससे आप जागरूक हों, अपने जीवन में इसको अमल जरूर करें, तभी इसका लाभ हो सकेगा।
7: बिल्कुल। तो श्वेता आप देखो हमारे स्टूडियो की घड़ी भी

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार आज निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण दे रहे थे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उली बगीचा पर्व आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सिंहभूम की सांसद जुबा मांझी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किसानों का मनोबल ऊंचा होता है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक रांची समेत संताल और कोल्हान के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पलामू प्रमंडल के जिलों समेत कई अन्य जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलामू जिला साइकिलिंग एसोसिएशन और जिला प्रशासन के सहयोग से आज साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: गच्छ लगाओ, गच्छ बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाइया सब भाई बहन मन के मनीष भाई भट्ट से जोहार और मनोज भाई राउर के हूँ जोहार
0: और सब सुनवाइये के मनोज भाई का जोहार और संगे संगे मनीष भाई राउर के भी जोहार का।

0: हाल चाल है मनीष
1: जोहार
0: भाई।
1: जोहार भाई, मोर हाल समाचार तो नगदी नगद है। राउर बताओ, राउर कर हाल समाचार कैसन
0: एकदम
1: है?
0: भाई बढ़िया है। देखो ने एखन बरखा पानी मनावे वाला है, तो खेती बाड़ी कर तैयारी होत है, जुताई में होत है, और संगे संगे देखो गाछ वृक्ष लगाए कर तैयारी भी होत है। कहे ना
1: एकदम
0: कि बरसात से पहले अगर गाछ वृक्ष में लगाब तो बढ़िया हो जी है कि
1: एकदम,
0: नहीं।
1: गच वृक्ष लगाए चाहिए। गच वृक्ष से हरियर तो जीव रहबे करेला, संगे संगे हमरे कर जे धरती है उकर जे वातावरण वो बढ़िया रहेला। और
0: हाँ
1: इकर संगे बताए खोजिला कि कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और देखो आजकल कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे मन जानम औषधीय पौधों पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ कर बारे में, और हमारे के बतावे डॉक्टर विक्टर थिंगुजोम। एक बाद कृषि विकास गीत में सुनो मुकुंद नायक और संगी मनकर गावल गीत। और आज एक ठोर जानकारी है मृदा संरक्षण आज की आवश्यकता है, एक बारे में हमारे के बतावे डॉक्टर पूजा सिंह। तो भाई देखो हमरे के तो और करेला कार्यक्रम से, लेकिन भैया बताए पहले का भाई देखो हमरे मन के जैसे है खेती बाड़ी हमारे मन करत थे। अखन देखो ने जने देखो तो ना ठनका कर बहुत प्रभाव चलत है
1: एकदम
0: खेती बाड़ी देने हमारे मन जाइल है। तो कम से लोहा कर जे डंडा मन रहेला, छाता मन रहेला, चाहे कोनो कोड़ी कुदाल में रहेगा, एक से हमारे मन के जब बरखा पानी कर लगत हिसन की आवेल है तो हमरे कुकर से दूर हो जाए के है कि नहीं।
1: एकदम
0: और गाछ वृक्ष कर नीचे भी रहे कि नहीं
1: नखे।
0: रखे
1: और मोबाइल फोन मन के हूँ ऑफ कर देवे के, और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो के नी धर के रखे के।
0: ऐसे ही बात है। देखो ना आजकल तो आज के देखो बरखा भी हो जाते तो हमारे मन कम से कम खेती बाड़ी जाते तो कम से कम अगर बरसाती चाहे कोनो छतरी मन गुंगो भी कहे ना जैसे हमारे लिए यहाँ पे ऊहो मन लेके हमारे मन के जाए के। और देखो गुंगो जो डंटा रह ले उतने बांस का रहला उतने
1: हाँ
0: दिक्कत नहीं के ऊपर से
1: नखे
0: है कि नहीं।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसने हमारे मन के लेके जाए के और खेती बाड़ी करे के है कि नहीं।
1: एकदम
0: और देखो भाई मन हमारे मन रोज दिन नवा नवा जानकारी में देते रहिला। और आई देखो तो खास जानकारी है कि औषधीय पौधा कर बारे में है नहीं,
1: हाँ।
0: तो क्या है तेने बताए दो तो।
1: तो देखो ये जानकारी है, आइज कर जो जानकारी ही है औषधीय पौधों पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली कर लाभ। कातरी हमरे के औषधीय पौधा मन से लाभ होएला उकर बारे में जानकारी है, और इके बतात हैं डॉक्टर विक्टर थिंगुजोम।
0: चलो तो सुनी ले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आज हम जानेंगे औषधीय पौधों पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्टर थिंगुजोम, वैज्ञानिक आईसीआर प्लांडू। थिंगुजोम जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, सबसे पहले आकाशवाणी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
0: आप सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि कृषि वानिकी क्या है।
2: तो पहले कृषि वानिकी में जो वानिकी जो फॉरेस्ट है उसका बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो जो फॉरेस्ट है इंडिया का, जो हम लोग का भारत का जो फॉरेस्ट का रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है। तो ये हर 2 साल में फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है वो बनाते हैं। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग का भारत में अभी लगभग 21% फॉरेस्ट एरिया है, और जबकि एक्चुअली फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हम लोग का जो प्लेन एरिया है उसमें 33% फॉरेस्ट एरिया रहना चाहिए, और जो पहाड़ी एरिया है उसमें 66% रहना चाहिए।
0: 66%
2: जी। और हम लोग का जो झारखंड है, झारखंड अभी राज्य में 8 नंबर पे है फॉरेस्ट एरिया में, और झारखंड का टोटल जो एरिया है उसमें से लगभग 30% फॉरेस्ट कवर है। तो पहले कृषि वानिकी का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। कृषि वानिकी एक बहुत पुराना प्रैक्टिस है, पर इसका मतलब किसानों सालों से मतलब प्रैक्टिस करके आ रहा है, पर इसको एक नया टर्म जो कृषि वानिकी दिया गया है। तो ये शुरुआत में 1800 का आसपास में म्यांमार में जो बर्मा उसी का एक किसान है वही मतलब शुरुआत किया था एक टीक फॉरेस्ट में। तो इसका मेन एम था कि जो टीक फॉरेस्ट का जो पेड़ का बीच में जो खाली ज़मीन है उसमें किसानों कुछ क्रॉप्स लगा के उससे वो लोग को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता था, और साइड बाय साइड जो पेड़ का देखभाल भी हो जाता था। तो धीरे धीरे ये सिस्टम पॉपुलर होते हुए इंडिया में लगभग 1923 आसपास आया था। पहले केरला में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में आया था, और बाद में जो इंडिया का अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उसमें 1960s-70s में जैसे इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICR का एक इंस्टीट्यूट है झांसी में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन जो देहरादून में है, और सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, और ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में इसका रिसर्च शुरू हुआ था। फिर कृषि वानिकी का जो एजुकेशन है इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया था जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर में इसका जो 7 5-year प्लान का पीरियड में इसको एक इम्पोर्टेंस दिया गया था, और धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते हुए फर्स्ट जो कृषि वानिकी का जो नेशनल सेमिनार था जो इम्फाल में जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे हुआ था। तो इसमें 1979 में कृषि वानिकी को एक एग्रीकल्चर का एक्सिल

0: सिलेबस में उसमें एजुकेशन में डाला हुआ था।
1: अब हमारे किसान भाई को बताएं कि झारखंड में कृषि वानिकी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं।
0: जी, तो पहले कृषि वानिकी का जो झारखंड में क्या स्टेटस है वो थोड़ा सा बता देते एक दो लाइन में। ये सैटेलाइट डेटाबेस का थ्रू ये पोटेंशियल चेक किया था, जिसमें जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 80% मतलब पोटेंशियल है कृषि वानिकी के लिए, और जो रांची डिस्ट्रिक्ट है उसमें अराउंड 50% का मतलब पोटेंशियल है। और एग्रो फॉरेस्ट्री जो कृषि वानिकी बोलने से मतलब एक सिंपल सा टर्म में बोलने से जो हम लोग पेड़ और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स साथ में लगाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग पशुपालन जैसे कि गाय बैल बकरी भी पालन कर सकते हैं एक ही जगह में एक ही टाइम में, नहीं तो अलग अलग टाइम में सिक्वेंस में पालन करना, उसी को हम लोग कृषि वानिकी बोलते हैं। और झारखंड में अभी ट्रेडिशनल में चार कृषि वानिकी का सिस्टम है। फर्स्ट में है एग्री सिल्विकल्चर सिस्टम, जिसमें जो एग्रीकल्चर है कृषि है और जो सिल्विकल्चर मतलब जो फॉरेस्ट का वही सिस्टम है। तो इसमें हम लोग पेड़ में लगाते हैं कटहल लगाते हैं शीशम गम्हार बकिन और सागवान लगाते हैं, और जो पेड़ का जो बीच में नहीं तो हम लोग बाउंड्री में लगा देते हैं, और जो खाली एरिया में उसमें हम लोग एग्रीकल्चर क्रॉप्स में गेहूँ सरसों मटर मकई धान आलू और टमाटर लगा सकते हैं। और एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम में हम लोग ज़्यादातर फलों वाला पेड़ लगाते हैं, उसमें हम लोग पपीता अमरूद कटहल लीची आम लगाते हैं, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हम लोग टमाटर बैंगन अदरक मिर्च लगाते हैं। और एग्रो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, इसमें ज़्यादातर हम लोग पेड़ के साथ जो गाय बैल बकरी का चारा लगाते हैं, इसमें जो जो पेड़ है हम लोग जो पेड़ लगाते हैं वो है शीशम बकिन और भांस वो लगाते हैं, और जो गाय बैल बकरी का जो चारा है उसमें हम लोग धूप घास नेपियर घास और गिनी घास लगाते हैं। और होम गार्डन एक सिस्टम है, वो मतलब हर घर में वो तो मतलब प्रैक्टिस करके आ रहा है ये सिस्टम। जो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पेड़ जैसे कि लकड़ी का पेड़ में हम लोग सागवान लगा सकते हैं, महागोनी लगा सकते हैं, और जो फल वाला पेड़ में हम लोग कटहल जैसे कटहल जामुन आम लीची लगा सकते हैं, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स में हम लोग आलू प्याज बैंगन मिर्च अदरक टमाटर मकई ये सब लगाते हैं।
1: आज हम बात कर रहे हैं औषधीय पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो औषधीय पौधे के बारे में बताएं, इसमें से कौन कौन से पौधे आते हैं और क्या क्या लाभ हैं।
0: जी जी जी, तो पहले तो झारखंड में ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है जो दवा का पौधा है इसका बहुत मतलब बड़ा ट्रेजर है, मतलब गॉड गिफ्टेड बहुत ज़्यादा ये है। इसमें झारखंड में अराउंड हम लोग का 1500 से ज़्यादा पौधा है जो दवाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और झारखंड में हम लोग लगभग 30 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो मतलब सालों से ये सब ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल प्रैक्टिस है वो करके आ रहा है। पर अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादातर ये जो मेडिसिनल प्लांट जो दवा पौधा है उसका कलेक्शन हम लोग जाता है वाइल्ड कलेक्शन, जंगल से कलेक्शन, तो उसमें कभी कभी उसका क्वालिटी में इसका क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और जो हम लोग वाइल्ड कलेक्शन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो जंगल में रिसोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो कृषि वानिकी जो मेडिसिनल प्लांट बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जो दवा का पौधा वाला ये जो कृषि वानिकी सिस्टम है, इसका क्या क्या बेनिफिट है कि झारखंड का कंडीशन में, इसमें झारखंड का जो आप लें जो ऊपरी भूमि है इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसका सोयल का फर्टिलिटी कम रहता है, सिंचाई का फैसिलिटी नहीं रहता है, और मार्केट के लिए मार्केट फैसिलिटीज कम रहता है, और क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी कम रहता है, और ऊपर से जो ऊपरी भूमि में जो इनहेबिटेड जो रह रहे हैं वो ज़्यादातर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, इसमें हम लोग दूसरा क्रॉप्स नहीं लगा सकते।

0: एब्जॉर्प्शन जो हम लोग इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको भी इंक्रीज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोल रहे हैं, जो पेड़ पौधा जो कार्बन को एटमोसफियर से कार्बन को ट्रैप करके, वो उसी का भी मतलब एक फंक्शन है। और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है कि हम लोग आजकल दवा का पौधा का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो जो इकोनॉमिकली हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स है, दवा पौधा है, वो लगाने से फार्मर्स को एक तरह का इनकम जनरेशन हो जाता है। और इसका ऊपर क्या होता है कि जो महिला किसान है उसको भी हम लोग प्रोसेसिंग हो, इसका मेंटेनेंस हो, इसका कल्टिवेशन हो, और ऐसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रूप में भी वो सेटअप कर सकते हैं। और एक है कि जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स का कभी भी जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, नहीं तो क्लाइमेट का कुछ, आजकल तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसका प्रोडक्टिविटी कम हो गया, तो क्या होता है कि तो क्रॉप, हम लोग क्रॉप फेलियर जो बोल रहे हैं, तो उसी टाइम में फार्मर्स के लिए एक इनकम सोर्स बन जाता है ये मेडिसिनल प्लांट बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स है। और जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं उसका जब ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट टाइप का है, तो लास्ट में जब ये पेड़ मैच्योर होगा तो इसमें से जो मेन इनकम है आ जाता है। और जो पेड़ मैच्योर होने तक का टाइम है, जो हम लोग इंटरक्रॉप में जो मेडिसिनल प्लांट्स लगा रहे हैं बीच में, उसमें से फार्मर्स को एडिशनल इनकम आता जाता है। और जो मेन हम पहले भी जो बताया था, जो झारखंड का जो मेडिसिनल प्लांट्स का जो यूनिक रिसोर्स है, ज़्यादातर जंगल से कलेक्शन करने से उसका साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट नहीं होने से धीरे धीरे इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो हम लोग जो कृषि वानिकी सिस्टम में लगाने से क्या होता है कि जो हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है, जो पौधा का जो इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा है, और साइड बाय साइड जो जंगल का जो रिसोर्स है वो एक तरह का कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक जो जंगल का जो पेड़ है उसका एक आर्टिफिशियली हम लोग अपना जगह में बना दिया, तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो हो रहा है, और ऊपर से जो जंगल में जो यूनिक रिसोर्स है वो साइड बाय साइड उसका भी कंजर्वेशन हो रहा है। हम लोग देखा है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स के साथ जो दवा का पौधा के साथ जो पेड़ लगाया है उसका ग्रोथ भी अच्छा खासा आता है।
1: अंत में हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: ये कि किसान भाइयों को, भाइयों बहनों को एक चीज़ बोलना चाहता है कि जो हम लोग मेडिसिनल प्लांट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में, ये एक बहुत सिंपल और सिंपल सिस्टम है, इसमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का जरूरत भी नहीं है, पर इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम जैसे पहले बताया था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। और इकोलॉजिकली जो हम पहले बताया था कि इस ये एनवायरनमेंट में कैसा इफेक्ट होता है, मिट्टी में क्या क्या इफेक्ट होता है, तो ये सब देखने के बाद आप लोग जो वेस्टलैंड है जहाँ पे आप लोग कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं लगा पा रहे, उसमें ये चीज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग का एक एडिशनल इनकम सोर्स भी आ जाए।
1: तो किसान भाई, आज आपने जाना कि औषधीय पौधों पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली के क्या लाभ हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे विक्टर थिंगोजोम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना है, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।
2: तो भाई बहन मन, एखन हमारे मन कृषि औषधि पौधा पर आधारित कृषि वानिकी प्रणाली कर जो लाभ है उकर बारे में जानकारी प्राप्त करत रही, और जानकारी देवत रहे डॉक्टर विक्टर थिंगोजोम, और इनकर से गोठिया रहे मनोज भाई।
3: तो भाई देखो, अभी कर बाद अब बेरा है कृषि विकास गीत कर।
2: हाँ, गीत गोविंद
3: कर गावल गीत।
4: सुनो किसान भैया, हमारे

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: तो भाई देखो इकर बाद एक और जानकारी भी है, तो जानकारी क्या है बताई दो तनी।
2: देखो भाई बहन मन, एगो जानकारी है मृदा संरक्षण आज कर का आवश्यकता है इकर बारे में। तो एक बताते हैं डॉक्टर पूजा सिंह और इनकर से गोटियाई हैं संजीव कुमार लाल।
3: जोहार नमस्कार किसान साथियों, हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम लगातार एक ही फसल का चयन करते हैं और जब लगातार एक ही फसल का चयन करते हैं तो फसल में जो कमी आ जाती है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और मृदा का संरक्षण हम कैसे करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है खेत बचाओ अभियान, इसमें यदि अपनी मृदा को हम सही से देख रेख कर लेते हैं, उसकी जांच करवा लेते हैं और कौन कौन सी पोषक तत्व की कमी है यदि इसकी हम भरपाई कर लेते हैं तो हमारा मृदा स्वस्थ होगा और जो भी हम फसल लगाएंगे उससे हम अच्छा आमदनी प्राप्त करें। तो मृदा का संरक्षण कैसे करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पूजा सिंह। पूजा सिंह जी स्वागत है। पूजा सिंह जी, मृदा का संरक्षण कैसे करें, दिन प्रतिदिन मृदा की उर्वरा शक्ति में क्षरण होता जा रहा है, क्या कारण है?
4: जहाँ तक मृदा और उसके संरक्षण की आज जो आवश्यकता हमें पड़ रही है, अगर हम इस पर एक बार ही विचार करें तो हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर मृदा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम सभी के लिए मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है और अगर हम इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की संभावनाओं की तलाश करते हैं या फिर किसी अन्य ग्रहों में भी जहाँ तक हमने जीवन की उत्पत्ति की संभावना तलाशने की कोशिश की है, तो मृदा उन प्रमुख अवयवों में से हमेशा रहा है। इसने प्राथमिकता हासिल की है जहाँ पे अनुसंधान किया गया है। पृथ्वी पर 95% जीवन के जीवों और उनके भोजन की निर्भरता मृदा पर ही बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने जिस तरीके से अपनी मृदा का उपयोग किया है, मृदा की उर्वरक क्षमता काफ़ी कम हुई है, उसकी गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है। मृदा की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे उसके पोषक तत्वों का क्षरण हुआ है, मृदा में यौगिक कार्बन की मात्रा में बड़ी कमी आई है और साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता का में भी काफ़ी कमी आई है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक मृदा की उत्पादन क्षमता 40% तक कम होने की संभावना है और इससे जुड़ी समस्याओं के कारण आज हमें अपने मृदा पर विशेष रूप से कार्य करने और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। यदि हम मृदा संरक्षण की आवश्यकताओं को समझें तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन सी कृषि पद्धति या प्रणाली है जिनके कारण आज हमारी मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ऐसी ही कुछ कृषि प्रणालियों में जो पहली कृषि प्रणाली है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसको हम सघन कृषि कहते हैं। इस कृषि पद्धति में हम हर साल अपनी मृदा से 2 से 3 फसल लेते हैं और हर बार जब भी हम किसी भी फसल को लेते हैं, फसल से पोषक तत्वों की का अवशोषण होने के कारण इन पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। हम हर एक वर्ष जितने ज़्यादा बार फसल अपनी मिट्टी से लेंगे, इन पोषक तत्वों में उतनी मात्रा में उतनी कमी आती है। पिछले दशकों में आज़ादी के पहले जब भी हम कृषि करते थे तो एक फसल साल में एक फसल लेने के बाद हम अपनी ज़मीन को कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण मिट्टी अपनी उर्वरक क्षमता को वापस प्राप्त कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आज हमारी जनसंख्या 9.2 बिलियन को पहुंचने को है, हमें अपनी मिट्टी से ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता है और इसलिए हम अपनी मिट्टी में सघन कृषि के लिए पूरी तरह से आश्रित हैं। लेकिन इसी के साथ इससे होने वाली जो भी नकारात्मक प्रभाव मिट्टी में हो रही है, हमें वो भी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मोनोक्रॉपिंग एकल कृषि प्रणाली हम कहते हैं, उससे भी हमारी मृदा की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आ रही है। एकल कृषि प्रणाली में हम हर साल फसल दर फसल, एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल लेते हैं जो एक ही प्रकृति की हो। जैसे अगर एक बार हम अनाज की कोई फसल ले ले, गेहूं या चावल ले ले, तो दूसरे भी हम इसी वर्ग के किसी फसल को लेते हैं, जिससे मृदा में एक ही सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। लेकिन अगर इस मोनोक्रॉपिंग पैटर्न या एकल कृषि प्रणाली को से हटकर हम फसल चक्रीकरण की तरफ जाएं, जहां पे हम अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों को भी सम्मिलित करें, वहां पर स्थिति यह हो जाती है कि अनाज जैसी फसलें जिसकी रेशेदार जड़ प्रणाली है, वो मिट्टी के ऊपरी सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, जबकि दलहनी फसलें निचली सतहों से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, जिसके कारण अलग अलग समय में अलग अलग सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और मृदा की उर्वरकता एक लंबे समय तक बनाकर रखी जा सकती है।
3: जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो मृदा की शक्ति बनी रह जाती है। पूजा जी, हम कैसे मिट्टी की जांच भी कराएं ताकि मालूम पड़ जाए कि इसमें कौन कौन सी पोषक तत्व की कमी है और उसका हम भरपाई कर लें?
4: आज हमारी मिट्टी में की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसका एक कारण यह भी है कि हम अपनी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है, जिसको हम उर्वरक के माध्यम से बनाए रखते हैं, इसका अनुपात काफ़ी बिगड़ चुका है। यह अनुपात जो अनाज के में 4:2:1 होना चाहिए था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, और दलहनी फसलों के लिए जो अनुपात 1:2:1 होना चाहिए था, आज वो बिगड़ कर भारत में 9:3:3:7:1 हो गया है, और झारखंड में भी यह अनुपात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बिगड़ कर 6:3:3:6:1 हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता है कि

0: जब भी हम अपनी मिट्टी में किसी भी तरीके के उर्वरक का उपयोग करें तो हमें यह जांचने की जरूरत है कि क्या हमारी मिट्टी को उस पोषक तत्व की या वो उर्वरक जिन पोषक तत्वों को प्रदान कर रहा है क्या उसकी आवश्यकता मिट्टी को है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी जहाँ पे फसल का उत्पादन करना है वहाँ से मिट्टी का सैंपल लेना है। ये सैंपल ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे मृदा को या खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को आपको बता सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी फसल अच्छी होती है आपने वहाँ से मिट्टी का नमूना ले लिया और आप उससे बता सके कि यही हमारी खेत की उर्वरकता है। मृदा से नमूना लेने के बाद सबसे पहले हमें उन्हें जांच कराने की आवश्यकता है। हम मुख्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जांच करते हैं क्योंकि पौधों के लिए ये प्राथमिक जरूरी पोषक तत्व हैं। अलग अलग विधि से इनकी जांच की जाती है। हमें यह ध्यान रखना है कि जांच होने के बाद नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मिट्टी में 280 से 560 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर हो। अगर ऐसा है तो जितना पौधों को आवश्यकता है हम उतना ही नाइट्रोजन देंगे। अगर ये मात्रा नाइट्रोजन का कम है मिट्टी में हम जितना भी उर्वरक बताया गया है उसे 25% ज़्यादा देंगे और अगर मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है उस स्थिति में हम अपने जितना भी उर्वरक बताया गया है उससे 25% कम उर्वरक मिट्टी में देते हैं।
1: जी, तो मिट्टी के लिए हम जांच करवाते हैं और मृदा कार्ड हम बनवा लेते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन सी पोषक तत्व की कमी है और उसकी हम अलग से भरपाई कर देते हैं। और यदि मृदा स्वस्थ रहेगा तो तभी हमारा फसल अच्छा हो पाएगा और तभी हमारा किसान भी स्वस्थ रहेगा, वित्तीय रूप से वो स्वस्थ रहेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा सिंह, सहायक प्राध्यापक उद्यान महाविद्यालय कोटपानी चाईबासा। आज इस कार्यक्रम में बड़ी अच्छी आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो भाई देखो एखन हम सुन ली मृदा संरक्षण आज के आवश्यकता बारे में हमने के बताया डॉक्टर पूजा सिंह इंकर से गुठियाल हैं संजीव कुमार लाल। तो एक संग देखो आज कर किसान होने के मेरा सिरा थे
3: तो बताए खोजिला भाई बहन मन की कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए अब सुने अगला कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनोइए फिर से एक धाव। मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: और मनोज भाई कर जोहार। और कहे चाहते कि जिसने हमारे मन तखन कहली कि स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, इकर मतलब का होगा भाई, बता दे।
1: देखो, स्वच्छ रह भोले स्वस्थ रह, काले की स्वच्छ रह भोले हमरे कर जीव जहान ठीक रही।
0: सही बात है, सही बात है।
1: साफ
0: और
1: सुथरा नहाई धुआई के फ्रेश रह, कूड़ा कचड़ा के रोड मन में जहाँ तहाँ नहीं फेंका
0: एकदम
1: भोले
0: सही
1: हमरे
0: बात
1: मन,
0: कह लिए।
1: एकदम बीमारी से बाँचल रह।
0: और देखो नी, सरकार देने से बहुत सारे योजना में चलाल जाला जे कि हमरे ले है और हमारे लिए मन उपयोग भी करे चाहिए, और हमके लगा था कि उसन अभियान में भाग ले के चाहिए
1: एकदम
0: कि ना।
1: जुड़े के चाहिए, सरकार कर जो योजना है जो अभियान है उकर से जुड़े के चाहिए, और उकर हमरे मन के जन जन तक उके पहुँचाई के उकर विकास करे के चाहिए।
0: जेकर देखो एक ठो सबसे बड़ा जैसे स्वच्छ अभियान रहे, स्वच्छ भारत अभियान, जे कि 2 अक्टूबर 2014 से और हो रहे है, तो हमको लगा था कि से बेरा से एखन तक कहब तो ये अभियान चलते हैं और हमारे मन के कर्म भाग लेते रहला। और संगे संगे देखब तो बीच बीच में कहब तो बहुत सारा ठाव में देखब तो हमारे मन मिलजुल के साफ सुथरा करे करे एक ठो और भी करेला है कि नहीं।
1: एकदम। और ये हमरे कर देश ले को बड़ योजना है, और इकर से हमरे कर जे सब गली मोहल्ला टोला है वो सब करी के उद्देश्य इकर के सब साफ सुथरा रहे, और सब पूरा देश क्लीन और साफ एकदम चिट रहे का।
0: सही बात है भाई। देखो हमरे के सब करे भी चाहिए और दोसर के जगवा भी चाहिए कि देखो साफ सुथरा रहने जरूरी है। और देखो साफ सुथरा कहे के चक्कर ऐसा नहीं कि अपन घर के साफ कर लिया, दूसरा घर के गंदा
1: गंदा
0: करत,
1: कर
0: दूसरा
1: देगी
0: दिन
1: सुन नहीं
0: कुछ
1: करे
0: कूड़ा कचड़ा के
1: के।
0: फेंकत है, उसने भी करे के एक बढ़िया ठाव में हमरे उनके फेंक के और हमारे मन के ऊपर के जलाए के चीज जलाए देव ना, तो फिर अगर छोड़े के तो छोड़ दूँ। फिर बहुत सारा गाड़ी मन आवेला, सरकारी गाड़ी मन उससे लेके चल जाबे
1: दे
0: है कि
1: देवे
0: नहीं।
1: चाहिए।
0: अब वो
1: हाँ
0: सेशन है कि खादो मन बनेला।
1: तो वो मान ले यूज हो जाएगा जो गाड़ी आवेला उकर में दे ले।
0: और जैसे इनके शहरी क्षेत्र में कहा तो बहुत सारा घर में जैसे कि किचन से जे कूड़ा कचरा निकले गमला मन भी डालल जाला है कि नहीं, जे कि खाद बनेला।
1: खाद बनेला तो हमरे मन के कर हूँ ध्यान देवे के, जे गीला कचड़ा है जे हरियर कचड़ा है उकर खाद बनेला तो उमन के देवे के गाड़ी वाला मन के, उमन अलगे अलगे लेवे ना और उकर खाद बनाई के यूज करे ना।
0: और सही बात है भाई बहन। देखो तो हमारे एक ठे नेक वाइज एक ठो कलाकार है रूना देवी, दे साफ सफाई कर महत्व कर बारे में हमारे के गीत कर माध्यम से
1: बताते हैं।
0: संदेश देवत है।
1: हाँ।

0: शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सही बात है। देखो मनीष भाई, हमारे के साफ सुथरा कर गीत सुन ली तो हमको लगा था कि कर से बहुत कोई फायदा ले गए हैं कि नहीं। और देखो आज ये शनिचर का दिन है कि है नहीं, और शनिचर का दिन में हमारे मन कर वार्ता रहेला कुरमाली में।
3: हाँ,
2: तो का जुगाड़ है बताओ नहीं?
3: देखो आज जुगाड़ है जो गांव में सुंदरीकरण का तीर हो इसके लिए कर बारे में, और इके बताते हैं विजय राज महतो। तो चलो सुनीला,
2: चलो
4: देश एकटा बेजाय बड़ देश है के हिया कर बेसी भाग लोग गाँवे रहत पेति 100 लगे मध्य 3-20 लोग गाँवे बसबास करत सेई महान आमर देश के गाँवे देश कहाल जाय पारे। एक गाँव महान भिनु भिनु जात पेशा धर्म कर माने लोग रहत आगुक आमले ओहे गाँवे बेस गाँव माने हेल्थी जेटाई भिनु भिनु पेशा कर लोग बास करे हला केवे काको छीथु नी करे हेल्थिन ओरा आपन बुता अनुजाय एक दोसर लोग के मदद करे हेल्थिन। झारखंड मुलुकटाई तो एसन एक दिन रोहे जेदिन गोटाटाई बने झाड़े ढापाल रोहे से बन झाड़ काटी कुटी गाँ घर दुआर बनाई के डी डिहाती गाँव सिरजला मूल रूप महान मानुष एक तीनटा जिनिस एक चार हेबे करे खाए पिंधे कार रहे मानुष एक बुध जैसे जैसे हेले गेलें तैसे तैसे आपन गाँव घर कैसे सुंदर सुघर देखाते ताकर आरिगुरी करे लगला आपन आपन घर ढीणाय दरकार अनुजाय किसिम किसिम कर गाछ बिरिज लगावे लगला जैसन आम जाम नीम कुसुम बड़ पीपड़ आसन पाखेड़ कोंठर आरो आरो पेती गाछेक जैसन नाम तैसन काम जतेक गाज ततेक फूल आर फर गाँवे कर लगे सुख सुविधा आर सुंदरता के बढ़ावे तेहें हमर देश कर संविधान महान ग्राम पंचायत गठन करेक जुगुत कराल गेला है। गाँव गाँव जैसे हेरिहर देखा आर मानुषेक उपगारे लागोक एह भावी के गाछ बिरिज लगावा योजना सामाजिक बन सृजन योजना द्वारा जे किंबा बिरिज रोपण दिन मानव एक छाकाय गाँव देहाते लोक के बीन पैसाय छोटो छोटो पोहा गाछ लगावे व्यवस्था कराल गेला है। इटा जानल कथा जे गाँव एक लोक बेसी गरीब हाथ कोनो नियार दिन काटत सतईखन पैसा कौड़ी टान रहे हैं टाका अर्जेक दसर कोनो जो नेखें काकरो धन दौलते रूप महान आहें तो किछु गहना गुड़िया गोरु डांगर आर एक आध किता जमी जेगिला अखर भीड़ साकटे काम देन गाँवे सबे लोग कोनो नी कोनो कामे लागी रहत उगाक डुबाले काम करत तबे साइझे चूल्हा जरें किछु लगे तो लुटियाना कुटीखाना दासा रहे घर दुआरे करो ठीक ठेकान नी रहे বেরসা পানি ঝঁকরিকে কাদা হেই যায়, ধসিও গিরেন সেই মহান জেসে মানুষ এক রহেক তেহে কোনো বেজুত না হোক তাকর খাতির গাঁও কে সুন্দরতা জাগা এক সরকারে ইন্দিরা আবাস পরিযোজনা দ্বারা যে পাকা ঘর বনাওল যাহেক, মানুষে যেসে দুই পয়সা রোজগার করে পারত সেটাক জ্বালাই পেতি গাঁওয়ে লোককে একশো দিন কাম দেয়েক জহর রোজগার পরিযোজনা করাল যায়, গাঁওয়ে সুন্দরতা বাড়াওয়েক আর উন্নতি জ্বালাই ডহর বাট সুন্দর সুগড় রাখা জরুরি হেকেক, বেরসা পানি গাঁও দেহাতে গলি কচাই কাদা ফুটি যাই চলেলাই বেজাই ভজকট হে, গাঁওয়ে কর রাস্তা গিলা যেসে পাকা করাল যায় তা করতে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক পরিযোজনা বনাওয়াল গেল আহেক, কারণ এক গাঁওলে দশর গাঁও যায় বা আনাগোনাক সুবিধা নির হলে ওহে গাঁও বিকশিত হেইনি পারে লোক সুন্দর নি কথি, গাঁওয়ে সুন্দরতা বাড়াবে সবলে বেশি বাধক হেলে অশিচ্ছা, সবলে বেশি মুরুখ মানুষ গাঁওয়ে আহাত, মুরুখ রহাটা সামাজিক সারাপ হেকে, গাঁওয়ে বিদ্যা বুদ্ধিক লোক নির হলে উ গাঁওয়ে মান ভরম নির হে, গাঁওটা নামি আর কামি রূপে নি গনায়, মোটামুটি ভাবে পেতি গাঁওয়ে একটা স্কুল স্থাপনা করা চাই, ইটাকে মানিকুন দেখিও তো ঝাড়খণ্ড রাইজে লগভগ 7,255 গাঁওয়ে এখনো তড়িক প্রাইমারি স্কুল কর সুবিধা নেখে, সবে গাঁও টোলা মহল্লা মহান একটা স্কুল হে যাহা ছলে 14 বছরের সবে ছোয়া গিলাই প্রাথমিক শিক্ষা উলুসে পাবত, এহে ধেই লেইকে সরকারে ঝাড়খণ্ড শিক্ষা অভিযান চালাউলে আহে, গাঁওয়ে এখনো দেখাল যায় বেজাই লগে রোগ রোগে দুঃখে গিরলে অঝা দেবনা ডান ভূত ঝাড় ফুঁকে উপরেই বিশ্বাস করি চলহত, ই রোগ গিলাই কাঠে ঘুন ঢুকত নিয়ারে ঢুকলে যাহে আর গাঁওকে জ্বর জ্বর করি দেহে, গাঁওয়ে বস কৈতাক সুন্দর সুঘর দশা দিনে দিনে ফকুয়াই যাহে, কিছু লগে জানি বুঝিকেও চিকিৎসা মরম বুঝেনি পারহত, অঞ্জান হেহত অকালে জিউ গুচাওত আসত বড়ি করেনি খজহত, এসব কারণে সঠিক রূপে চিকিৎসা ব্যবস্থা করাল গেলায় গাঁওয়ে গাঁওয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনা করি কহুন মুফত আসত বড়ি দেওয়াল যায়, গাঁওয়ে যাহা তাহা মানুষ আনগা করত বাঁধ ভুলত আর আবজৌ ডিঙ্গাওত, যাকর মহান গাঁও ঘিসট ফুহর হেই যায়, বাতাবরণ দুষিয়ায় যায় নানা নিগিত রোগ বিরোগ সিরজন হে, এহে জাগরুকতা আনেক তেহে সরকার বাটেলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালাওল যাহে যেসে গাঁও ঘরে সুন্দরতা দেখা, ঘর ঘর শৌচালয় বনাই দেবে যোজনা বনল আহে, গাঁও দেহাতে মানুষের নিত নিত যে দেরিপটা খুবই বেশি দরকার হে সেটা হলে পানি, পানি বিনু কোনো জীব বাঁচে নি পারত ইটা সভে কর জানল কথা হেকে, এসে তো নাহান ধোয়ানে বা সময়ে সময়ে চাষবাসে জ্বালাই বাঁধ কুয়া ডাড়ি পোখেরে আশ্রে করা জরুরি হেকে, যে যে গাঁওয়ে ইসব গিলা কমি আহে সে সে গাঁওয়ে পঞ্চায়েতে দ্বারা যে খনাওয়ে ব্যবস্থা করাল যায় পারা হে, সাফা সুতরা সুদ পানি পিয়ে जैसे गांव घरे पेती लोगे पावो ताकोल लाई चापा कोले व्यवस्था बा पानी टंकी व्यवस्था कराल जाहे गावे एक सुंदरता बढ़ावे और उन्नति जलाई डोहर बाट सुघोर रखा जरूरी है के बेरसा पानी गांव देहाते गोली कोचा कादा फूटी जाए तो हमरा कहे परियो जे गावे जन्मी के बाड़ियो फसल उपजाई के खाई के भोगायो छाती उड़नाई के चलियो घर दुआर बनाई के बसागत करियो एक दशरे दुख दुखुआ से पास हियो से गावे गाछ बिरिज लगावे चिकित्सक जलाई सब हेल्थ सेंटर खोला निरक्षरता घुचावे तेहें स्कूल स्थापना करा साफ सुथरा पानी पिए और चाषबासे तेहें पटाने व्यवस्था करा प्रतिटा नागरिक दायभार और कर्तव्य हेके तबे गावे रूप रंग हेरियर देखाते अकाले डर निरहते सूद पानी बासाते टान नीहते कहाल गेल आहे देहाते हवा और डाक्तरे दवा जन्म भूई के माई भूई कहाल जाए गांवले बाहेर दूरा देशे केवे रोलो भूले नी पारते सेलाय कहत गांव माई समान गांव जेतना हेरियर हरियाली और सुंदर तेतना चेड़े चुनगुनी चहर बहर गांव सुंदर तो देश सुंदर फूल मोह मोह तो गांव लहल।
3: तो भाई बहन मन एखन हमरे मन गांव में सुंदरीकरण का इतरी हो सकेला इकर बारे में कुरमाली वार्ता सुनत रही और इके बतात रहे विजराज महतो।
2: सही बात है, देखो हमरे कर झारखंड में कितना सुंदर है, वन पहाड़ पर्वत से भरल है। चलो एक गीत सुनी ला पंच परगनिया में सुभाष कुरियर संगी मन कर गावल गीत।
3: चलो तब सुन ले वेला।

0: तो भाई बहन मन एखन हमारे पंच परगनिया लोकगीत सुभाष कोरियर संगे मनकर गावल सुनली।
1: तेकरे संग आइज कर हमारे दिनकर बेरा सिरात है, कहे चाहते खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। मन का संगे मनोचर
0: मनीष भाई के देव विदा
1: जोहार।
0: जोहार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए किए वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्यभर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई शहरों में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। और एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य में आज से पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान देवेश तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
2: छात्रों के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का शुरुआत किया गया, जो झारखंड की पहचान है, जो उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया गया। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया और जो विकास के कार्य है 3 नदी से आकांक्षी जिलों में चल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीट परीक्षा को लेकर रांची समेत राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक तैयारी की गई है। रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीपीओ रूपक कुमार ने बताया कि जांच अभियान चलाकर विभिन्न होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों का सत्यापन और जांच की गई।
3: नीट परीक्षा जो कि दिनांक 21/6/2026 को प्रस्तावित है, उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों का सत्यापन कर उन्हें मूर्त रूप देने में ईआरओ एवं एईआरओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान एसआईआर के विभिन्न चरणों, इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विस्तार से जानकारी दी गई।

0: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल वासियों को संबोधित करते हुए विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता को मजबूत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल यानी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य के सभी 24 जिलों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप में सुबह 6 बजे से योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे और योग के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इधर साहिबगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम फूलो झानो इंडोर स्टेडियम में कल आयोजित होगा। साहिबगंज के जिला आयुष पदाधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने लोगों से निरोग रहने के लिए योग अपनाने की अपील की।
2: जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बढ़ती उम्र में हम इस योग का प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, कैसे हम जुड़े, कैसे हम अच्छाई की तरफ बढ़े। सब योग केवल रोग को नहीं ठीक करता, वो मन को भी ठीक करता।
0: उधर हजारीबाग जिला आयुष समिति और आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई और कल होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। वहीं गोड्डा में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 75 प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा। राजधानी रांची स्थित संत पॉल कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के CTSP पारस राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए मैच में भारत ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम में झारखंड की निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग भी शामिल है। फाइनल में अब भारत का सामना मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की वितरित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ और एईआरओ को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची समेत राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पूरी। हजारीबाग गोड्डा समेत कई जिलों में निकाली गई जागरूकता रैली। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत ने चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। कप्तान सलीमा टेटे बनी प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सरायकेला शैली छऊ नृत्य को एक नया आयाम मिलने वाला है। इग्नू के माध्यम से कलाकारों के लिए 6 माह तथा 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ होने वाला है। इसकी जानकारी पद्मश्री शशधर आचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से यह कोर्स प्रारंभ होगा। पद्मश्री शशधर आचार्य ने कहा कि
2: मई महीना में इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है कि 15 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। एक कोर्स है 6 महीने का डिप्लोमा, दूसरा कोर्स है 1 साल का डिप्लोमा। अगर ये डिप्लोमा को लोग करते हैं तो उनको जो अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली समय में मिलेगा, क्योंकि NEP के तहत ऐसा है कि जिस एरिया में जो डांस फॉर्म है, जो संगीत है, जो थिएटर है, फोक थिएटर है, उसी का ही टीचर को रखा जाएगा।
1: जिले में रफ बाइकिंग एवं मॉडिफाइड बाइकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अभिभावकों से जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा कम उम्र के बच्चों और किशोरों को बाइक चलाने के लिए ना दें। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि
3: उसमें उनके पेरेंट्स की ज्यादा गलती है। बच्चा अपने से तो गाड़ी पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं अनदेखी है या मूक सहमति है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स समझाएं, वो तो अबोध बालक बालिका है, ताकि उनके लापरवाही से ना दूसरे की जान खतरे में आए, ना उनकी खुद की स्वयं की जान।
1: कोटप्पा एक्ट के तहत जिले में निकोटिन युक्त पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि
4: किला मुख्यालय के जो बाजार है उनके विभिन्न दुकानों में कोटपा एक्ट के अनुपालन और कोटिन युक्त पान मसाला की मार्केट में उपलब्धता क्या है और क्या उसको लेकर हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं। निकोटिन युक्त गुटखा पान मसाला भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कहीं कुछ भी प्रोडक्ट

0: इस संबंध में डीएसए के सचिव मोहम्मद दिलदार ने कहा कि
1: सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 25 पुरुष टीमों और 6 महिला टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस बार हमने दो वेन्यू चुना है, बिरसा स्टेडियम सरायकेला में महिला फुटबॉल और पुरुष फुटबॉल के मैच खेले जाएंगे, दो ग्रुप के मैच खेले जाएंगे, जहां 10 पुरुष फुटबॉल टीम और 5 महिला टीमें वहां भाग लेंगी और बाकी 15 टीमों का मुकाबला अर्जुना स्टेडियम खरसावां में होगा।
0: डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ष 2006 से लगातार जिला फुटबॉल लीग का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस वर्ष भी जिला फुटबॉल लीग के जरिए ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
2: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है हो लोकगीत, कलाकार हैं बीर सिंह हेमरोम और उनके साथी।

0: बीर सिंह हेमरोम और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार, जिसमें आज आप सुनेंगे क्रमशः नागपुरी, उराव, मुंडारी, हो और संताली भाषाओं में समाचार। पहले सुनिए नागपुरी भाषा में।
1: ये आकाशवाणी रांची है के अबरौरे में मनंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना कर 23वां किस्त जारी कर लें। देश कर 9 करोड़ से अधिक का किसान मन कर खाता में 18,880 करोड़ रुपया ट्रांसफर करल गेलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल नई दिल्ली कर विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर तहत 2,400 करोड़ रुपया कर प्रोत्साहन राशि जारी कर है। ई मौका में कहलें कि ई योजना उद्योग और युवा मन कर माझे एगो मजबूत पुल है के।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: राज्य कर दूगो राज्यसभा सीट ले 18 जून से हो के होवल चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कर उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जीतलें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रांची में शहरी विकास और विद्युत योजना मन कर समीक्षा बैठक कर लें। राज्य कर जनजातीय क्षेत्र मन में बांचल 20,000 घर मन में बिजली पहुंचाकर वचनबद्धता निभाए कर बात कहलें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तमाड़ में NH-33 कर जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले काम कर भूमि पूजन कर लें। वो कहलें कि रांची कांडरा रेलवे लाइन संगे क्षेत्र कर प्रमुख सड़क मन कर काम जल्दी आगे बढ़ाल जाए। रक्षा मंत्रालय झारखंड ले अलग NCC निदेशालय स्थापित करे कर मंजूरी दे दे है। इकर से राज्य में NCC कर प्रशासनिक व्यवस्था और ट्रेनिंग कर गतिविधि अधिका सुदृढ़ होवी। भारतीय सेना और वायुसेना रांची कर नामकुम सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि कर तहत 9वां मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर कर सफल आयोजन कर लें। 5 दिन तक चलेक वाला खास शिविर में 2,500 से अधिका मरीज मन कर जाँच करल गेलक। सुप्रीम कोर्ट झारखंड में जंगल मन और प्राकृतिक इको सिस्टम के बचाए कर जरूरत में खास जोर दे है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर पीठ वन मनकर सीमाना जगन पत्थर खनन और स्टोन क्रशर में रोक लगाकर झारखंड हाईकोर्ट कर आदेश में दखल देवे से साफ मना कर दे है। राइज कर नवा एडवोकेट जनरल रोहितस्य रॉय 15 जून के पदभार ग्रहण कर लें। इकर पहले पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन व्यक्तिगत कारण से अपन पद से इस्तीफा दे दे हैं। राइज कर 11 गो विशिष्ट उत्पाद मन के GI टैग मिल है। इकर में भगैया और कुचाई सिल्क, डोकरा सिल्क, केसरिया, कलाकंद, जादो पटिया चित्रकला, तसर साड़ी और पांची साड़ी शामिल है। झारखंड में नियम मन के ताक में राइज के चलाए के वाला 33 गो फार्मेसी कॉलेज मन कर सहमति पत्र रद्द कर देवल जाए है। ई कॉलेज मन में आप आगामी सत्र 2026-27 में नवा एडमिशन नहीं होवे पारी। जनगणना कर पहला चरण कर तहत मकान सूचीकरण और मकान मन कर गिनती काम में डेगा जिला 100% सफलता हासिल कई रहे। उपायुक्त कंचन सिंह कहलें कि बेस टीम वर्क कर चलते कठिन भौगोलिक परिस्थिति मन कर बावजूद ई काम समय से पहले पूरा करल गेलक। 10 लाख रुपया कर इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो 21 साल बाद कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देलक। पुष्पा महतो पूर्वी सिंहभूम और सारंडा क्षेत्र में सक्रिय रहे। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में रांची कर चान्हो कर झारखंड बालिका आवासीय स्कूल देश भर में पहला स्थान हासिल कर है। इकर में हजारीबाग कर बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वां और लातेहार कर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरीसात 64वां स्थान में है। धनबाद कर IIT ISM अपन 100 बरिस कर ऐतिहासिक यात्रा में एगो नवा उपलब्धि हासिल कर है। संस्थान के पहला धाव QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017

0: 27 स्थान मिल है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान के 21वां स्थान मिल है। कल आयोजित होने वाला रीनीट परीक्षा कर अभ्यर्थी मनकर सुविधा ले रांची रेल मंडल दूगो परीक्षा स्पेशल रेल चलाकर फैसला कर है। कल मनाएक वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लेके राइज कर शो 24 जिला मन में रीझ कर माहौल है। इकरे संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सिरालक।
1: ईद आकाशवाणी रांची के अकुनिम पुतुल त्रिकीति कुड़कनु हफ्ता खबर में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्ना पीएम किसान योजना ही 23वीं किस्त जारी नंजस देश ता 9 करोड़ ती बग्गे किसानेर ही खाता नो 18,880 करोड़ ढिबा सातारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेला नई दिल्ली ता विज्ञान भवन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ही तहत 2,400 करोड़ ढिबा ही प्रोत्साहन राशि जारी नंजस अरा आस बाचस का ई योजना उद्योग अरा इवर ही मझी उनटा मजबूत पुल ही के
2: भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: राजीता दूर राज्यसभा सीट के 18 जून उलामन्ना चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उम्मीदवार वैद्यनाथ राम अरा एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जीतचस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लालेस रांची नु शहरी विकास अरा विद्युत योजना ही समीक्षा बैठकी नंजस अस राजीता जनजातीय पहटा नु बछरका 20,000 इरपा नु बिजली अस्थानन झुंझुना तिंगियस। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठस तमाड़ नु NH-33 ही जमशेदपुर रांची खंड नु ओवरलैंड नलखन खेखिल पूजा नंजस अरा बाचस का रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत आपाटा ही मुख डहरे सड़क ही नलक चाणे मुंधवारे बढ़रो। रक्षा मंत्रालय झारखंड के जुदम एनसीसी निदेशालय उक्ताना ही मंजूरी चीचिचकिरी इतु राजी नु एनसीसी ही प्रशासनिक व्यवस्था अरा प्रशिक्षण गतिविधि बग्गे दौमनो। भारतीय सेना अरा वायुसेना रांची ता नामकुम शनि अस्पताल नु ऑपरेशन ही चड्डे 9वे मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर इधर तोहान ने ऑपरेशन ही दौ आयोजन नंजा 5 दिन गोटी चलरना ई विशेष शिविर नु 2,500 ती बग्गे मरीजर ही जाँच मंजकिरी। सुप्रीम कोर्ट झारखंड नु टोड़ंग अरा प्राकृतिक इकोसिस्टमन बचवाना अकाय जोर चिचकिरी चीफ जस्टिस सुरकांत ही फीट टोड़ंग ही पाटा नु पखना खोटना अरा स्टोन क्रशर नु रोक लगावानु झारखंड हाईकोर्ट ही आदेश नु दखल चीना ती साफ इनका नंजा चिचस। राजी तापुना एडवोकेट जनरल रोहितेश रोयस 15 जून उल्ला पदभार नु उकियस इदिन तिमुंद पूर्व महाअधिवक्ता राजीव रंजनेश तंगहै व्यक्तिगत कारण चलते ई पदन ई पद्धति इतका रचस। राजीता गारा विशिष्ट उत्पाद गे आई टाई खखरकिर ई या भगैया अराकुचय सिल्क डोकरा सिल्क केसरिया कालाकंद जादोपटिया चित्रकला तसर साड़ी अरा पांची साड़ी मेसार ई। झारखंड नु नियमन ताक नु उइया चलना 33 फार्मेसी कॉलेज ही सहमति पत्र रद्द नंतारा। इबड़ा कॉलेज नु अब बरना सत्र 2026-27 नु पुनः एडमिशन पोलो मना। जनगणना ही पहल चरण नु एड़पा सूचीकरण अरा एड़पा ही गंती नलख नु सिमडेगा जिला 6% सफल हासिल नंजकिर ई। उपायुक्त कंचन सिंह बाजकर अश का बेहतर टीम नलख ही करने कठिन भौगोलिक परिस्थिति ही वजूद इनलख समिति पहले नना उंगतारा। 10 साल ढिब्बा इनाम ता हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतोद 21 बच्चर खोखा कोलकाता नु पुलिस ही हेदे आत्मसमर्पण नंजा। पुष्पा महतो पूर्वी सिंहभूम अरा शांडा पहटानु सक्रिय रहचा। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग नु रांची ता चान्हो नुराना झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय देश भर नु पहल अड्डा हासिल नंजा। यह हजारीबाग ता बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वे अरा लातेहार ता उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरी 64वे अड्डा नु रहचा। धनबाद नुराना IIT-ISM तंगहाय 100 बच्छर ही ऐतिहासिक यात्रा नु उनटापुना उपलब्धि हासिल नंजा। संस्थान गे पहिल बेड़ा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 नु अड्डा खखरा। वैश्विक रैंकिंग नु संस्थान गे 21वें स्थान खखर के रही। इदी संगम कुड़ुख नु हफ्ता खबर मुंजरा।
3: नया आकाशवाणी रांची तना मर ना दोहोड़ो जगर ते धनिक गुड़िया ते ने हफ्ता रिया खबर बु आयुम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसिंग पीएम किसान योजना रिया हिसी आपी चनम रिया नितिर केदा। दिसुम रे अरे करोड़ खेतियार को आ खाता रे गेल इरलिया हजार अरे साय उपुन हिसी करोड़ टका कुल जना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होला नई दिल्ली रे विज्ञान भवन रे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लेकते बर हजार उपुन सै करोड़ टका रेया बोनोरसा टका नितिर केदा। ने हल्ला जोला रे इनकिन काजी के दाची ने काजी कामी लेकते कारखाना ओड़ो सेपड़े कोथाला रे जोड़े नो बावा।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
3: राज्य रे बारिया राज्यसभा हुदा मेन तेगेल इरलिया जून रे होबलन सल्ला रे झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन बैजनाथ राम उड़ो एनडीए रेन परिमल नाथवानी तिकिन जिताओ जाना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रांची रे शहरी हनरा उड़ो बिजली रे पिप्ती दुनुबाय रिका केदा। इनकिन राज्य रे बचाव कन आदिवासी क्षेत्र रे हिसी हजार ओड़ा रे बिजली सेटर ओआ में नकदा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तमाड़ रे NH-33 रे जमशेदपुर रांची रे ओवरले कामी मेनते बोंगा बुरु हो बजना। ने दिपली इनकिन काजी के दाची रांची कंडरा रेल लाइन जमा मूद मूद संडका कोरा कामी पोसायोआ। रक्षा मंत्रालय झारखंड मेनते NCC निदेशालय बई मेनते हे केदा। नेते राज्य रे NCC रे काजी कामी पोक्तोआ। भारतीय सेना उड़ो वायुसेना रांची रे नामकोम पलटन अस्पताल रे ऑपरेशन दृष्टि लेकते मेन रे रानू मेन ते ने डालेना। मोड़े माँ सांते सेसेन केन ने रानू रे 2500 ते आदिका होड़ो को रानुयना। सुप्रीम कोर्ट झारखंड रे बीर उड़ो नेता रे या जिनिस को जोगाव जतन मेन ते जो रकदा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बीर छेतर रे अधीरी खदान उड़ो क्रेसर को रोकाव रे झारखंड हाईकोर्ट हुकुम के हे केदा। राज्य रे नवा एडवोकेट जनरल रोहित साय राय गेल 3 जून रे हुदय संभड़ाव केदा। इनकिन राजू रंजन तिकिना टायट किन आव केदा। झारखंड रे बेगर आयन ते सेसेंतन हिसी गेल अपिया फार्मेसी कॉलेज को रद जना। ना दो ने कॉलेज को रे आयर सेशन 2026-27 में ते नवा बहाली का हो बावा। होड़ो लेकर या सीधा चनम लेकर ते उड़ा कोरा लेने का और लिस्ट बाई रे सिमडेगा जिले आयर कना। DC कंचन सिंह तिकिन काजी के दाची मोने केटे कामी के ते नया कामी सोबेन को ते सीधा रे रिकायना। गेल लाख के रेन कुड़ी उगरवादी पुष्पा महतो हिसी मिन सिरमा तायम ते कोलकाता रे सिपाही को आयर रे जिमायना। इनकिन सीधा पूर्वी सिंहभूम उड़ो सरंडा एरिया रिकिन कताई किना। सफा सुथरा स्कूल रे रेटिंग रे रांची रे चन्नो रे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गोटा दिसुम रे सीधा टायद नाम केदा। जबकि हजारीबाग रे बिहारी बालिका हाई स्कूल हिसी में ओडो लातेहार रे उत्क्रामित मध्य विद्यालय तुरी साथ अपी हिसी उपुन टायद रे टायन जना। धनबाद रे IIT-ISM 100 सिरमय पूरा केदा। ने गोट रे 2027 रे सीधा टायर नाम लेना। गोटा दिसुम रे हिसी मिट टायर रे नामकना। गप्पा होबाओ री नीट परीक्षा मेनते परीक्षा ओल को असुबिस्ता मेनते रांची रेल मंडल रे बरिया परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाओ रेया काजी कदा इंतारेगी चक्रधरपुर मंडल राउरकेला और टाटा नगर थाला रे मूद रेल चलाओ रेया काजी कना नया लोतेगी आकाशवाणी रांची ते खबर नेतारेगी टुंडू जना मरजवार
4: निना आकाशवाणी रांची तनना अबेन डॉक्टर प्रदीप कुमार बोदरत आते मी हाटो रेया खबर हो हायमते आयुमेबेन मूर दुवेन नरेंद्र मोदी तेकिंग तिसिंग पीएम किसान योजना रिया हिसी किस्त किंग कुलकेडा मुलुक रेन अरेक रे अरे करोड़ा ते पूरे चासी होड़को के पासबुक रे गेल रिल हजार रिल सौ पुन हिस्सी करोड़ टका को कुल जाना मुर्दुआन नरेंद्र मोदी तेकिंग होला नई दिल्ली रिया विज्ञान भवन रे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रिया देंगते 12000 उकुन सौ करोड़ टका रिया प्रोत्साहन टका किंग कुल केडा नेन उड़ी रे आकिंग जगर केडा छी निया योजना खाकना ओंडो सेपे नपनम को तला रे मिय केटे फूल तना
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है
4: राज्य रिया बारिय राज्यसभा सीट लगिन 18 जून मुसिंग होबाजन सनाला रे झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन उम्मीदवार वैद्यनाथ राम ओंडो एनडीए रेन देंगा एमतन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी तिकिंग दाइजन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तिकिंग रांची रे शहरी विकास ओंडो विद्युत योजना को रिया समीक्षा दुनुप किंग रिके केडा अकिंग राज्य रिया आदिवासी टाइट को रे सारी अकन हिस्सी हजार वा को रे बिजली ईट देवा आयती अकिंग उड़ू दिटतडा केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ तिकिंग तमार रे एनएच 33 रिया जमशेदपुर रांची कांडा रे ओवरले प्लाई रिया ओते बोंगाबुरु जना नेन उड़ी रे अकिंग जगर केडा ची रांची कांडा रेलवे लाइन लोते टाइट रिया मूल सोड़पको रिया पार्टी को अंजागे होवाना रक्षा मंत्रालय झारखंड लगिन तनगते एनसीसी निदेशालय बैतिया मंजूरी एमतरा निनाते राज्य रे एनसीसी पार्टी को ओंडो ए ट्रेनिंग को बुगलिका होबावा भारतीय सेना ओंडो वायुसेना रे रांची रिया नामकुम पाल्टन अस्पताल ऑपरेशन दृष्टि रिया देंगते आर्या मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर बुगलिका होबजना सुप्रीम कोर्ट झारखंड रे वीर को ओंडो पुद्गल होयोगामा को बचावे तिया गोरज रे विशेष जोरा एमतडा चीफ जस्टिस सूर्यकांत तिकिंग वीर रिया चिरमेट जापा दिरी ओल पार्टी ओंडो गिटी मशीन के बंद इची रिया झारखंड हाईकोर्ट आंधेरे दखल का एमेतिया सपा सपा किंग जागर केडा राज्य रिया नामा एडवोकेट जनरल रोहितेश्वर राय तेकिंग 15 जून मुसिंग किंग ज्वाइन केडा एन आयर ते महाधिवक्ता राजीव रंजन तेकिंग निजी कारण ते ते पदयते रिजन किंग एम केडा राज्य रे गेलमिय जिनिस को जीआई टैग नामा कना निना कोरियन नामा कना बगैया ओंडो कुचाई सिल्क डोकरा केसरिया जदुपटिया तसर साड़ी को एमन शामिल झारखंड रे आइन को दयाकुंडम के ते सेशन तन दोसी अपीए फार्मेसी कॉलेज रिया सहमति पत्र रद जननेन कॉलेज रे ना हुजू तन बोचर 2026-27 रे नामा एडमिशन को का हो बना जनगणना रिया प्रथम चरण रे वा को रिया सूची बाईजन ओंडो वा रिया लेने का पार्टी को सिमनेगा जिला रे पूरे बुगिन लिखा हो बजना गेल लाख टका रेन नामी कुड़ी बुरु हो पुष्पा महतो हिसी मिट बचर चना कोलकाता रे पुलिस सामना रे सरेंडर जाना पुष्पा महतो पूर्वी सिंहभूम ओंडो सरंडा बीर रे तैकना ते पार्टी को चलाओ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱪ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱨᱤᱛ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱴᱤᱝ ᱨᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱱᱦᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱟᱵᱟᱥᱤᱭᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮ ᱢᱟᱝ ᱴᱟᱭᱰᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱟᱭᱴᱤ ᱟᱭᱮᱥᱮᱢ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱢᱨᱟᱝ ᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱚᱵᱚᱱᱛᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱞ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱵᱟᱨᱤ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱴᱨᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱟᱨᱣᱤ ᱟᱱᱛᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱡᱳᱜᱽ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱥᱤᱯᱩᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱟᱸᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱵᱟᱡᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱟᱣᱩᱛᱷ ᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱛᱷᱨᱳᱵᱚᱞ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱᱥᱤᱯ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱠᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱟᱵᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
5: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱟᱯᱮ ᱰᱩᱢᱱᱩᱢᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱤᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱯᱮᱭᱟᱱ ᱠᱤᱥᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ 9 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱮ 88,080,000 ᱴᱟᱠᱟᱭ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱤᱠᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 2,400,000 ᱴᱟᱠᱟᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱚᱱᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है
5: ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱨᱟᱡᱽᱥᱚᱵᱷᱟ ᱥᱤᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 18 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱢᱳᱨᱪᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱫᱱᱟᱛᱷ ᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱮᱱᱰᱤᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱱᱤᱨᱫᱚᱞᱤᱭᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱱᱟᱛᱷᱣᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱮᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱳᱦᱚᱨ ᱞᱟᱞ ᱫᱚ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨᱤ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱩᱛ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱥᱟᱞᱟᱜᱚᱴᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱮᱡ 20,000 ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱨᱟᱹᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱮᱴᱷ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ NH-33 ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱳᱵᱟᱨᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱟᱱᱰᱨᱟ ᱨᱮᱞᱣᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱭᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ NCC ᱱᱤᱫᱮᱥᱟᱞᱚᱭ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱸᱥᱟᱹᱨᱤ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ NCC ᱭᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱯᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚᱲᱦᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱭᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱢᱠᱩᱢ ᱥᱮᱱᱮ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱫᱨᱤᱥᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 9 ᱢᱮᱜᱟ ᱱᱮᱛᱨᱚ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ 5 ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱨᱮ 2,500 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱩᱜᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱤᱠᱳᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱥᱴᱤᱥ ᱥᱩᱨᱤᱠᱟᱱᱛᱟ ᱯᱤᱴ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩᱣᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹᱥᱩᱨ ᱫᱷᱤᱨᱤᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱴᱳᱱ ᱠᱨᱟᱥᱟᱨ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱯᱷᱟᱼᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱨᱳᱦᱤᱛ ᱥᱟᱭ ᱨᱚᱭ ᱫᱚ 15 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱚᱫᱽ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱚᱡᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱚᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱛᱷᱤᱯᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ 1 ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ GIT ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱭᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱪᱟᱹᱭ ᱥᱤᱞᱠ ᱰᱳᱠᱨᱟ ᱥᱤᱞᱠ ᱠᱮᱥᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱱᱫ ᱡᱟᱫᱚᱯᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱛᱨᱚᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱯ ᱞᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚ 30 ᱯᱷᱟᱨᱢᱮᱥᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱢᱚᱛᱤ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱥᱚᱛᱨᱚ 2026-27 ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 1,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱱᱟᱠᱥᱟᱞᱤ ᱯᱩᱥᱯᱟ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱫᱚ 21 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱚᱨᱚᱫ ᱮᱱᱟᱭ ᱯᱩᱥᱯᱟ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱟᱱᱰᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤᱛ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱴᱤᱝ ᱨᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱱᱦᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱟᱵᱟᱥᱤᱭᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱡᱤᱣᱟᱨᱤ ᱵᱟᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ 21 ᱟᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱮᱦᱟᱨᱟ ᱩᱛᱠᱨᱟᱢᱤᱠ ᱢᱚᱫᱫᱷᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱛᱩᱨᱤᱥᱟᱛ ᱛᱩᱨᱩᱭᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱷᱟᱱᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱟᱭᱴᱤ ᱟᱭᱮᱥᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱤᱭᱩᱮᱥ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱝᱠᱤᱝ 2027 ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱝᱠᱤᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱤᱱᱤᱴ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱞ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱴᱨᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱪᱚᱠᱨᱚᱫᱷᱚᱨᱯᱩᱨ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱣᱩᱞᱠᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱴᱟᱴᱟᱱᱚᱜᱚᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱴᱨᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱚ ᱰᱟᱠᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱟᱣᱩᱛᱷ ᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱛᱷᱨᱳᱵᱚᱞ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱᱥᱤᱯ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱫᱷᱟᱯᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱷᱮᱞ ᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱯᱟᱹᱰᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱚᱠᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱣᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
6: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र
7: से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र

0: अंक में विश्व सिकल सेल दिवस, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी और झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओमकारेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच और उपचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के समय निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में से एक बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
1: अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के 7 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी।
0: विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल रांची में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर अभिषेक रंजन ने कहा कि सही उपचार और जागरूकता के माध्यम से सिकल सेल का उन्मूलन संभव है।
2: जो कार्यक्रम था वो हमारे राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, सिकल सेल नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम पे। उसका प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग उसको और इंटेंसिफाई कर सकें, क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें हमारे राज्य के नागरिकों को। सैया सब भी आई हुई थी, हमारा मेन पर्पज था कि हम लोग उसको ट्रेन कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल है, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी क्या गंभीरता है और राज्य सरकार का क्या उसमें योगदान है और उस हमारे प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग पूरे राज्य में उसको सुचारू रूप से हम लोग।
0: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
3: आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलते। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब एक दिन शेष है और झारखंड समेत देश भर में योग के प्रति उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। खूंटी जिले के ग्रामीण इलाकों में भी विश्व योग दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही है। माहिल स्थित योगाभ्यास केंद्र में योग प्रशिक्षक नमित नाग ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली स्वस्थ बनी रहती है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर घर योग पहुंचे और सभी स्वस्थ हैं, क्योंकि आज के समय में योग की बहुत सारा महत्व है, क्योंकि अगर आज योग अगर है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं तो आजकल के जो भी वातावरण है अशुद्ध है और उसे हम कैसे शुद्ध करें और स्वस्थ में अपने स्वस्थ में परिवर्तन करें, उसके लिए हमें योग की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। और आज प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर एक घर योग पहुंचे और लगभग हम उस कार्य पे लगे हुए हैं कि हर घर तक योग पहुंचे और सभी स्वस्थ रहें।
0: झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक दंपत्ति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल स्वयं को स्वस्थ रखा है बल्कि समाज में भी योग के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया है।
5: निःशुल्क सेवा दी है और आगे लगातार चलते रहेगी और हम लोग प्रत्येक दिन योग का माध्यम से सभी को जागरूक किए हैं और लगभग आज कोडरमा जिला में माने सरकारी टीचर से लेकर के प्राइवेट तक सभी का आम जनता से लेकर के 10,000 से ऊपर हम लोग योग शिक्षक बना चुके हैं।
6: दिनचर्या जो है मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठना, उठ के घरेलू कार्य को करते हुए फिर बाहर नियमित योग शिविर में जाना, एक नया योग कक्षा लगाना ताकि वहाँ भी एक नियमित कक्षा स्थापित करना, ये हमारा रेगुलर 20 साल से 22 साल से प्रयास चल रहा है और ये सार्थक भी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह लोग योग कर रहे हैं।
0: योगाभ्यास के लिए आए लोगों ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक जीवन शैली का भी आधार है।
6: योग ही मेरा शरीर है, जब तक योग नहीं करेंगे तब तक मेरा शरीर अच्छा नहीं रहेगा। बॉडी हल्का होता है या कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इससे बहुत बेनिफिट है।
7: बहुत सारे लोग विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं, उससे निजात पाने के

0: लिए सबसे बड़ा योगी है।
1: वहीं उपराजधानी दुमका में योग अब केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जन अभियान का रूप ले चुका है। योग महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। महिलाओं का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा में भी वृद्धि हुई है।
2: ये महिलाओं की ही क्लास है और ज्यादातर महिलाएं इसमें जो है 30+ में ही रहती है। बच्चों की भी क्लास होती है लेकिन ये मुख्यतः महिलाओं की क्लास है।
3: मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, मुझे बीच बीच में फिजियोथेरेपी जाना पड़ता था हर 15-20 दिन में, लेकिन योगा क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे एक दिन भी वहाँ जाना नहीं पड़ा।
4: मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मुझे डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने उतरने या नीचे बैठने मना कर दिया था, लेकिन योगा से मुझे बहुत फायदा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ, नीचे भी बैठती हूँ।
5: मुझे हार्ट की बीमारी है लेकिन अब बहुत ज़्यादा आराम है योगा करने से।
6: मेरे बैक भी गैप था हड्डी में, मुझे डॉक्टर ने झुकने तक मना कर दिया था। मैं यहाँ आके स्वस्थ हूँ ही हूँ, स्वस्थ के साथ हम लोग को जीवन में एक डिसिप्लिन।
7: मेरे को तो बहुत ही फायदा है, जैसे मेरे कमर में बहुत दर्द था ये है कमर का दर्द है, जैसे मेरे घुटनों में दर्द था वो भी नहीं है, और यहाँ आके मन इतना खुश हो जाता कि घर पे टाइम होते ही लगता मैं वहाँ जाऊँ।
1: इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जमशेदपुर में विशेष उत्साह का माहौल है। लोह नगरी के बर्मा माइन स्थित खालसा मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों के लिए विशेष योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
8: हम सालों भर 365 दिन योग दिवस ही मनाते हैं और लोगों में योग के प्रति जागरूकता और लोग योग को अपना कर अपना जीवन को कैसे संवारे, अपने जीवन जीने की कला कैसे सीखे, इसके लिए हम लोग सालों भर कार्य करते हैं।
9: मेरे यहाँ पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई होती है, क्लास में हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के तहत योग का आयोजन किया जाता है। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिक्षकों के द्वारा योग दिवस की पूर्वान तैयारी की जा रही है।
1: रांची के मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून तक झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026 भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय मेले में राज्य भर के किसानों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, बीज, उर्वरक और लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि मेला किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है।
10: हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व आज ये कृषि व्यापार मेला, जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास आज।
1: वहीं इस अवसर पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस 3 दिवसीय मेले का उद्देश्य किसानों और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर उन्हें सशक्त बनाना है।
11: कि आज देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी FPO, SAG और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो, और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार ध्वनि चित्र। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। पेश है प्रोग्राम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज से, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन की तर्ज। फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।

अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म है आप आए बहार आई।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनिए विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
3: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
2: जी,
3: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा

है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ। अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्ही चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बी ए एम ए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें

0: बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमो इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभा

0: को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारी युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है। रहा है वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए

0: पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए हैं और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
2: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए 4 लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज।
3: वीर जी, मेड इन इंडिया। वीर जी, इंडी तो चिपी भी इंडिया बीच बन रही है।
4: कमाल है ना, कुछ साल पहले स्वदेशी जेहा कुछ भी नहीं सी, पर आज स्वदेशी का मतलब है टेक्नोलॉजी, शोर है, इनोवेशन, एम्पावरमेंट, पर हजे तक भारत की ताकत होर भी बतानी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के
2: मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
2: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की और एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
2: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
2: जो
1: है,
2: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
2: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
2: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
0: 25 करोड़
2: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
2: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
2: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
0: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट
0: हुई। अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए।

0: चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश हैं। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होंगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
3: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
3: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई, शायद 100 हो गई।
2: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
3: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को

0: शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की

0: तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President

0: काशी रेड रोड पर 2000 मदद करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की कयादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राबतों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते आदत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राबतों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाजियात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से पेशरफ्त को यह कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरूकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरूक की तरक्की को रफ्तार देना है।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रूपये मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रूपये मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों ज़राअत, देही तरक्की, माही पर इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
1: रोड, कृषि, बंगाल के विकास को, यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
0: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया मां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेन्द्र मोदी मुश्तरक योग प्रोटोकॉल अपनाने में

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। इनका बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। गीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने फरखां साहब ने, कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुम तो मेरी लाज, रघुवर तुम तो मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान। सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद की कुछ गाने भी बनाए थे। क्योंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल था। ये है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।
1: आदमी के जमाने में यही पहचान चाहे वही इंसान है।
0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ, संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट

0: कंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। अभी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद का संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है, इस तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुन

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बलसे हमारे छत पर बैठकर अक्सर शुरुआत में आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखी।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे कई युगल गीत गाए, फिल्म दिल ने फिर याद किया। फिल्म सूरज

गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक
1: In today's national program of music, we are going to broadcast a classical vocal performance by Dr. Vivek Karmahe.
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है. भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे. विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है.
1: When profound

0: dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्लास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर, महान संगीत मनीषों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
0: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna Tilwara taal mein nibaddh hai jiske bol hai Vaari jaau re tum pe. Dit rachna teen taal mein hai jiske bol hai Chalo re mai Ram Siya Darshan. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित तृष्णा एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्वित तृष्णा भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग।
1: डॉक्टर विवेक करमहे's वोकल रेंडिशन इन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे इज कंक्लूडिंग हिज रिसाइटल विद राग सोहिनी। द मध्यलय कॉम्पोजिशन सेट टू तीन ताल हैज द लिरिक्स देख देख मन ललचाई, एंड द द्रुत कॉम्पोजिशन सेट टू तीन ताल हैज द लिरिक्स रंग न डारो श्याम जी।

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी

0: मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। मनाया जाएगा, इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। अरभड़ी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।